नाम सुमाया जो शरण परे तिस की पत रखे जाए पूछो वेद पुराणी हे जे सर सेवा लाए सोई चन लागे पुर के शब्द परम पौ पागे विचे ग्रेस दा रहे उदासी ज्यो कमल रहे विच पानी हे विच होमे सेवा थाए न पाए जन्म मरे फिर आवे जाए सो तप पूरा साई सेवा जो हर मेरे मन पानी है हौ क्या गुण तेरे आखा स्वामी तू सर्व जिया का अंतर जामी हौ मांगो दान तुझे पै करते हर अनदिन नाम वखाणी है किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर दीवान माया का मैं हर बिन टेक तर अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी है निमाणे मान करे तुझ पावे होर केती चख चख आवे जावे जिनका पख करे तू स्वामी तिनकी ऊपर गल तुझ आनी हे हर हर नाम जिन सदा त्याया तिनी गुर प्रसाद परम पद पाया जिन घर सेव्या तिन सुख पाया बिन सेवा पछो ताणी हे तू सब में वरते हर जगन्नाथ सो हर जपे जिस गुर मस्तक हाथ हर की शरण पया हर जापी जन नानक दा दसाणी हे मारू सोलहे महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद कला उपाय करी जन तरना गगन रहाया हुमे चरणा अगन उपाय ईदन मैं बाधी हो प्रवराके भाई हे जी जंत को रिजक संभाहे करण कारण समरथ आपाहे खिन मैं थापो थापन हारा तोई तेरा सहाई हे माद गर्भ में जिन प्रतपालिया सास ग्रास हुए संग समालिया सदा सा जपगे सो प्रीतम वड्डी जिस वड्याई हे सुल्तान खान करे खिन कीरे गरीब निवाज करे प्रामीरे गर्भ निवारण सर्व सधारण किस कीमत कही न जाई हे सो पतवंता सो धनवंता जिस मन वस्या हर भगवंता माद पिता सुध बंध भाई जे ए सृष्ट उपाई हे प्रव्याय सरना पौनी करना साध संगत ने चोहे तरना मन भज कर्म आराध्य करता जिसे नाही कदे सजाई हे गुण निधान मन तन मैं रव्या जन्म मरण की जोन न पव्या दुख विनाश किया सुख डेरा जा तृप्त रहे आगाई हे मीत हमारा सोई स्वामी थार्थ अंतर अंतर जामी सेवर सिमर पूर्ण परमेश्वर चिंता गणत मिटाई हे हर का नाम कोट लख बाहा हर से कीर्तन संग तन ताहा ज्ञान खड़कर कृपा दीना दूत मारे कर ताई हे हर का जाप जपो जब जपने जीत आभो वसो कर अपने लग चौरासी नरक न देखो रसक रस गुण गाई हे खंड ब्रह्मंड उदाहरण हारा ऊच अथा अगम्य पारा जिसनों कृपा करे प्रभ अपनी सो जन तसे ते आई।

तेरी बिनस गई हो मैं मत मेरी अंगीकार किया प्रभ अपने जग में शोभ सुहाई है जय जय कार्य पू जगदीश बल बल जाई प्रभ अपने ईस इस बिन दूजा अवर न दिस एका जगत सुबाई है सत सत सत प्रभ जाता गुर प्रसाद सदा मनराता सेमर सेमर जीवे जन तेरे एक अंकार समाई है भगत जना का प्रीतम प्यारा सबे उदाहरण खसम हमारा सिमर ना पुन्नी।

सुंदर कुंडल मुकुट बयन शंख चक्र गदा है तारी मां सारथी ससंगा पीत पीतंबर तेर पवन तनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग तर भगवान बीठला मैं गणतन आवे सरबंगा ने कंटक ने केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पयाल समीपत अस्त्र स्थान जिस गए अपगा

कोए, पूछो जाए सियाणिया दुख काटे मेरा कोए। सतगुर साचा मन वसे साजन उत ही ठाए, नानक मन तृप्ता सीए।

सोदर सेवहो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है सच्ची वड्याई दे, सच्चे माए समावसी जिसनु नदर करे पौड़ी, तूरे ए न आखी है अंकार मरे दुख पाव है, अंधे आपना पछाणनी दूजे पज जावे, आत क्रोध स्यों लूज दे।

ब्यास कहत है सुख को पूछो जाई, कहे कबीर आरामे रम छूटो नाए तब बूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है जौला मनो ना तरे विकार, जे घर बन संसर किया ते पूरे संसार। सार सु पाई गे रामा रंग रवो आत्मा राम रहाओ, जटा पसम लेपन किया कहा गुफा मैं बास। मन जीते जग जीते जाते बिखिया ते हुए उदास, अंजन दे सवे कोई टुक चाहन माए बिडान। ज्ञान अंजन जे पाया ते लोइन परवान, कहे कबीर अब जानिया गुर ज्ञान दिया समझाए। अंतर्गत हर पेटिया अब मेरा मन कतहू ना जाए, रिद सिद्ध जाको फुरी तब काहू स्यों क्या काज। तेरे कहने की गद क्या कहो मैं बोलत ही बढ़ला।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे शदर तरै रखाओ, जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे नीचे ऊच करे मेरा गोविंद। काहू ते ना डरे नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे तै रविदास सुनो रे संतो। हर जीव ते सवे सरे मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध। नवृद कर तलता के हर का हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद, चौतीस अक्षर माघी व्यास विचार कहो परमार्थ। राम नाम सरनागी सहज समाध उपात रहत होए, बड़े पाग लिव लागी कहे रविदास उदास दास मत। जन्म मरण पै भागी तुखारी संत महला पहला, बारे माहा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। तू सुन किरत करमा पुरब कमाया, सिर सिर सुख सहमा देसो तू पल। हर जना तेरी कागत मेरी, हर बिन कड़ी ना जीवा। प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली, गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी, ब्राह्मण कर्म सुकर्मा। नानक पंथ निहाले सा तन, तू सुन आत्म रामा। बाबी गा प्रे बोले कोकल बाणिया, सा तन सबरस चोले। अंक समाणिया हर अंक समाणी जा प्रा पाणी।

नर शब्द मिलाए तिन प्रव कारण किया तुखारी मुहला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक सूर करम्मा सदगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच समालिया अहे निस देख बिचारिया धावत पंच रहे कर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत पई गुर

पंथ चले गोर सतगुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रै लोआ देखण आए तीन लोक थुर नर मुनजन सब आया जिन परसया गोर सतगुरु पूरा तिन के किलगत नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी

पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ राख हो किरपाल रखाओ अनक जतन गमन करो खड़ कर्म जुत ध्यान धरो उपाव सगल कर हारियो नह उठे बिकराल शरण बंदन करना पते पाव हरण हर हर हर हरे एक तू ही दीन दयाल प्रभ चरण नानक आसरो उदरे प्रमो सागर।

हर बेन जन्म अकार सजात तद गोपाल आन रंग राजत मिथ्या पैरत खात रहाव तन जोबन संपय सुख भुगवे संगन निभत मात मृत्युना देखर त्यो बावर द्रुम छाया रंग रात मान मोह महामद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लियो दास नानक को प्रभ जी हुए सहात केदारा मोहल्ला पंजवा हर बिन कोई न चालत साथ दीना नाथ करना परस्वामी अनाथा के नाथ रखाओ सुध संपत दिखिया रस भोगवत।

कछबे आपे संत संग व्यवहार रखाओ कर अनुग्रह आप राखियो नहीं उपजतो बेकार जिस प्राप्त हुए सिमरै।

पत्र मैं तो पुरख बेदाता मार्ग प्राप का हर किया संतन संग जाता पुरख बेदाता घट घट नजर निहालिया जो सरणी आवे सर्व सुख पावे।

ऐसी खेप हमारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोल, छूट गई संसारी रगाओ, ताते लाए तो सच लागे, साचे के व्योहारी, साची

पाया। जैसे खूंद कुमारी काम क्रोध तृष्णा के लीने, गतनी एक जानी फूटी आँखें कछु ना सूझे।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जापो जन्म गयो, साच शब्द बेन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ, तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अदफारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी, भैरों महला पहला, ढूंढी चाल चरण कर खिसरे।

को दर कार कभू न जानस, एको दर्श त्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कहे विचारा भैरों महला पहला, सगली रैन सोबत गल फाही, दिन सजंजाल गवाया, खिन पाल कड़ी नहीं प्रो जानिया, जिन एहो जग त्यो पाया, मान रे क्यों छूटस दुख पारी, क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी रगाओ, उन दो कावल मानमुख मत होची, मन अंधे सिर तंदा, काल विकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गर फंदा, डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, साबद सुरत नहीं पाई, सातर वेद त्रै गुण गए माया, अंधलो तंद कुमाई,

गुरमुख राम नाम जब हिरदे सहसे ती कर जाइए रघाव। परम भेद पौ कभू न छूड़स आप जात न जानी बिन घर नाम को मुक्त न पावस डूब मोए बिन पानी। धंधा करत सगली पद खोबस परम ना मिटस गुवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद बसारा। अकोल निरंजन स्यो मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बहा एको जानिया

काल करे, बिन गुर शब्द मुक्त खां प्राणी, राम नाम बेन उर्ज मरे, दंड कमंडल शिखा सूद तोती, तीर्थ गमन अद प्रमण करे, राम नाम बेन सांत न आवे, जप हर हर नाम तो पार परे, जटा मुकुट तन पसम लगाई, बस्त्र छोड़ तन नगन पया, राम नाम बिन तृप्त न आवे, किरत के बंधे भेस पया, जेते जी जंत जल थल मईल, जतर कतर तू सर्व जिया, गुर प्रसाद राख।

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हृदय नाम साए, भैरो मोहल्ला तीजा नामे उधरे तब जितने लो गुरमुख जिना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे गुरमुख नाम वडियाई दे, अरहाओ आराम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उधरे सब कुल उदाहरण हार, बिनावे मनमुख जमपुर जाहे, औखे होवे चूटा खाहे, आपे करता देवे सोए, नानक नाम प्राप्त होए। भैरो मोहल्ला तीजा गोविंद प्रीत सनकाद उधारे, आराम नाम शब्द विचारे,

जम काल सदा है सिरे ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हा मन वसिया, दर साचे पद पाई, भैरों महला तीजा, मानमुख आसा नहीं उतरे, दूजे पाए खुआए, उधर न सान ना परिये कबहू, तिस न अगन पचाए, सदा आनंद राम रस राते, हिरदे नाम दुबदा मन पागी, हार गा अमृत पी तृप्ताते रहाओ, आपे पार ब्रह्म सृट जिन साजी।

सगले संसार ओड उपाव चित दहे प्राणी सो होवे जे करे चोज विडाणी रख हो कृपा तार तेरी शरण तेरे दरबार रघाओ जिन सेव्या निरपो सुखदाता तिन पो दूर किया एक पराता जो तू करे सोई फुन होए।

भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे माज, पिता पूदरल कीनी सांझ, कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूत एके रंग लीने, भैरो मोहल्ला पंजवा, निर्वैर पुरख सतगुर प्रदाते, हम अपराधी तुम बगसाते, जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई, सुख पाया सतगुर।

रहाओ, जाकी दृष्ट दुख डेरा टहे, अमृत नाम शीतल मन गहे, अंग भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण गारी, खिन में ऊने सुबर भरिया, खिन में सूके कीने हरिया, खिन में निथावे को दीनो थान, खिन में निमाने को दीनो मान, सब में एक रहा पर पूरा, सो जापे जिस सतगुर पूरा, हर कीर्तनता को आधार, कहो नानक जिस आप दयार, भैरों महला पंजवां, मुए दुहागन आप सिगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुख अर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद, कर कृपा मुए पेटे कंत रगाओ, तब्द बुझी पूर्ण सब्यासा, मिटे अंधेर भय परगासा, अनघ शब्द अज

हर हर जपना कहो नानक जो जन प्रापाए ताकि रेन बिरला को पाए भैरो महला पंजवा चितवत पाप ना आलक आवे बेसवा भजत किश न शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमन की वेला बजर सिर परे माया लग फूलो संसार आप भुलाया भुला मनहारे अराच रहया बिरथा व्योहार रगाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्योहार बंद मन तावे करने हार ना जी मैं पावे करत करत भी दुख पाया पूर्ण होत न कार्ज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ जो जल बिन मीना जिसके राखे हुए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन नमसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जागे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो निरपाई तार लय सागर संसार रहाओ जिन को लिखिया हर इहो निदान सेजन दरगे पावे मान सोग सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न थावे थाओ जुगे जुगंतर इहो तत्सार हर सिमरन साचा बीचार जिस लड़ लाए लय सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी जन सब तेरे हाथ नानक के प्रसद की साथ भैरो महला पंजवा नाम हमारे अंतर जामी नाम हमारे आवे कामी रोम रोम रवे हर नाम सगुर पूरे कीनो दान नाम रतन मेरे पंडार अगम अमोला अभर अपार अरहाओ नाम हमारे नेचल तनी नाम की महिमा सब

तेरा परवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा भैरों महला पंजवां।

ऐसो त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपे जन सोए रहाओ। अंग बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग। नाम त्याए हर हर हरे, साजना के संग निस्तरे। बैरी मीत होए सम्मान, सर्वमय पूर्ण भगवान। प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया। कर कृपा जिस राखे आप, तोई भगत जपे नाम जाप। मन प्रगास गुर ते मत लई, कहो नानकता की पूरी पई। भैरो महला पनवा, सुख नाही बहुते तन खाटे। सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए। सर्व सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो। सास पागे वड़पागी, गुरमुख हर हर नाम कहो रहाओ। बंधन माल पिता सुध बनता, बंधन कर्म तरमो करता। बंधन काटनहार मन वस, तौ सुख पावे निज कर बस। सब जाजक प्रादे मनगार, गुण निदान बेंत अपार। जिसनु कर्म करे प्रव्यापना, हर हर नाम तिने जन जपना। गुर अपने आगे अरदास, कर कृपा पुरख गुणतास। कहो नानक तुमरी शरणाई, ज्यों भावे त्यों रखो गुसाई। भैरो महला पंजवां, गुरमुख त्यागो दूजा पाओ। गुरमुख जप्यो हर का नाओ, बिसरी चिंत नाम रंग लागा। जन्म जन्म का सोया जागा, कर कृपा अपनी सेवा लाए। साधु संग सर्व सुख पाए, हरहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे। नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेड़त मन पया आनंद। सर्वन दान नाम भगवंत, जन मरण की मिटी जमत्रास। साध संगत हूंद कवन विगास, गुण गावत निचल विश्राम। पूर्ण होए सगले काम, दुलभ दे आई परवान। सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभु कृपा करी। सास ग्रास जपो हर हरी, भैरो महला पनवा। तब ते ऊंचा जा का नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ। जे सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख बसे मन आए। सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए। रहाओ पुरख निरंजन सिरजनहार, जी जंत देवे आहार। कोट खते खिन बख्शनहार, भगत पाए सदा निस्तार। साचा तन साची वड्याई,

राम नाम रिद्ध दियो निवास, सदा आनंद नाही किज सोग, दुख दर्द न व्यापे रोग, सब के तेरा तू करने हार, पार ब्रह्म अगुण अपार, निर्मल शोभा अचरज बाणी, पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी, जल थर महील रविया सोए, नानक सब जि प्रवते होए, भैरो महला पंजवा, मन तारा ता राम रंग चरणे, सर्व मनोरथ पूर्ण करने, आठ पैर गावत भगवंत, सगुर दीनो पूरा मंत, सोवड़ भागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरे संसार, रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक, तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी, सो पतवंता जे आप शानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल निरहिण ते आया, टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण हृदमाय निवासा, कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभु की सरना, आप वित पाम सब कीने, राम रसायन रसन।

निमखना छोड़े सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार संभाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु का मन जोर एक बिना दूजा।

का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

मेरी पटिया लिख दियो गोविंद मुरार। पुत्र प्रहलाद सिंह कहे आ माए, प्रवृत्त ना पड़ो रही समझाए।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ विर माया नाओ मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे पाई, नाओ मेरे संग अंत होए सगाई।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अरहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब की स्यार से

जन कबीर को जोर ना पहुंचे, कहां करो रग राया, काम किवारी दो सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा।

विद्या कोट सबे गुण कहे, तउ पार ब्रह्म का अंत न लहे, बावन कोट जाके रुमावली, रामन सयना जयते शली, सहज कोट भो कर्त पुराण, दुर्योधन का मथिया मान, कंदर्व कोट जाके लवे न तरह, अंतर अंतर मनसा हरे, कह कबीर सुन सार्ग पान, दे अपय पद मांगो दान, भैरों बाणी नाम दियो जियो की, कार पहला एक ओंकार, सदगुर प्रसाद।

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरि परमे नाम दियो यो करना अंत रूप तेरे नारायण पर तान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी जो

तैसे ओए नरा परमत नाम दियो नाके बिना ना सोहे बत्तीस लखना दूध कटोरे गडवे पानी कपल गाए नामे धुए आनी दूध पियो गोबिंद राए दूध पियो मेरो मन पतियाए नहीं ता कर को बाप रसाए अरहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी लै नामे घर आगे तरी एक भगत मेरे हिरदे बसै नामे देख नारायण हस्ते दूध पियाए भगत कर गया नामे घर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा

ज्यों जो नामा हर गुण उचरै भगत जना को देवरा फिरे भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज त्रिखा बंद जल सेती काज जैसी

तंदा जैसी संबल देख सुआ बिगसाना अंध की बार मुआ लपटाना पापी का घर अग्ने माहे जलत रहे मिटवे कब नाहे।

औरेठानी दुट सवा मेल मंत्र उपाया करसे औध कनेरी गिरतार जाल ज्वाला पै राख्यो राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कोप्यो मोए बताओ जो तुह राखे पीत पीतांबर तिरपावन तनी थंब माए हर पाखे हरण आगस जन नखे बदारियो।

गोपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तनी पाखंतन बाज बजाएला गरड़ चढ़े गोविंद आएला।

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेवरांगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे,

भगत वचर हर वस्ते मन आए, गुर कृपा ते सहज सुभाए, भगत करे विचों आप खोए, तद की सात मिलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रद्वार, गुर के हित साचे प्रेम प्यार, अरहाओ भगत करे सो जान निर्मल होए, गुर सब जी विचो होमै खोए, हर जीव आप से मन आए, सदा सांत सुख सहज समाए, साच रते तिन सब

पावे, सदा शुभ शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रसेवे सहज सुपाए, नानक नाम से मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर के द्वार, सची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया।

एको सेव हो अवर न कोए। जित सेवे सदा सुख होए, ना ओ मरे ना आवे जाए। तिस बिन अवर सेवी क्यों माए, थे जन साचे जिनी साच पछाणिया। आप मार सहजे नाम समाणिया, गुरमुख नाम प्राप्त होए। मन निर्मल निर्मल सस होए, जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान। साज शब्द प्रभ एक संयान, हर चाखे ता शुद्ध होए। नानक नाम रते सच सोए,

पद खोए साचा सेवो साची बाणी नानक नामे साच सुवाणी बसंत महला तीजा बिन करमा त परम भुलाई माया मोहे बहुत दुख पाई मनुख अंधे ठौर न पाई बिष्टा का कीड़ा बिष्टा माए सुमाई हुकम मन्ने सो जन परवान गुर के शब्द नाम निशान अरहाओ साजरते जिना तुर लिख पाया हर का नाम सदा मन पाया सतगुर की बाणी।

राम नाम रस रहे अघाए, पोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे। जीव तुम्हारे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने। गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ। भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम संत न पावे कोए। गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए। काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई। नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई। वडभागी

साधु संगत गुरे बताई ऊहां जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा, जिस बोलत मुख पवित होए, जे सिमरत

तेरा दिया सब जंत खाहे अंतरजामी प्रभ दयाल। अपने दास को नदर निहाल कर कृपा मुझे देहो दान। जब जीवे नानक तेरो नाम बसंत महला पंजवा राम रंग सब गए पाप। राम जबत कछ नहीं संताप गोविंद जबत सब मिटे अंधेर। हार सिमरत कछ नाहे फेर बसंत हमारे राम रंग। संत जना सो सदा संग रहाओ संत जनी किया उपदेश। जय गोविंद भगत सो तन देश हर भगत हीन उद्यान थान। गुर प्रसाद खड़

दान तेरिया संत जिना की बाशो तूर। जप नानक स्वामी सद हजूर, बसंत महला पंजवा सच परमेश्वर नित नवा। गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप। जाके सिमरन नहीं संताप, खसम त्याई एक मन एक पाप।

दुष्ट दूत सा प्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए तुग देद संतर रहे ताए किरत ओ ना का मिटसनाहे कोई अपना बीजिया आप खाहे जन का रखवाला आप सोए जन को पहुंच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप अखंड पूर्ण या को प्रताप गुण गोविंद ने दर्शन गाए नारक जीवे हर चरण ते आए बसंत मोहल्ला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रव करी माया सर मनोरथ पूर्ण काम जब जीवे नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर चित आवे बिन सदगुर दीसे बिन लांती सागत फिर आवे जावे रगाओ से तनवंत जिन हर प्रवरास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपय पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो लिवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल थल महियल रह रया गुर मिल नानक हर हर कहया हरिट सिद्ध।

प्रकाट मैल निर्मल करे, गुरपूरे की सरणी परे आप करे आप करने हारे, तर कृपा नानक उधारे बसंत महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख फूल फूल फूले, अंग त्याग त्यागे चरण कमल पागे, तो मिलो प्रसु भागे हर चेत मन मेरे, अरहाओ सगन बाज कूले, एक रह सूक कठूले बसंत रुत आई, प्रफूलता रहे अब करू आयो रे, एक नाम बोवहो बोवहो अनरूत नाही नाही

तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। भगत तेरा सोई तुद पावे जिसनु तू रंग धरता। तू वरदाता तू वरदाना और नहीं को दूजा। तू समर्थ स्वामी मेरा हाँ क्या जाना तेरी पूजा। तेरा मैल अगोचर मेरे प्यारे विघम तेरा है पाना। कहो नानक तय पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना। बसंत हिंडोल महला पंजवा मूल न बूझे आपना सूझे। परम व्यापी अहंग मनी पिता पार ब्रह्म प्रवतनी। मुए निस्तारो निर्गुणी रहाओ ओपत परलो प्रवते होवे। ए बिचारी हरजनी नाम प्रभु के जो रंग राते। काल में सुहिए से गनी आवर उपाओ न को सूझे। नानक तरिगे गुर बचनी एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। राग बसंत हिंडोल महला नावा साधु इव तन मिथिया जानो। या पीतर जो राम बस्त है साचो ताए पछानो। रघाओ इव जग है संपत सुपने की।

कज बिगड़ो नाहन अजहो जाग रहाओ। सब सुपने कै यो जग जान बिन से शिन में साची मान संग तेरे हर बस्तनीत निज बासर पजता हे मीत बार अंत की होए सहाए कहो नानक गुणता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदिया कार पहला दो तुकियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

ना पण थज दोत सवार प्रयो सेवो प्रप्रेम आधार गुर शब्दी बिगत्यास निवार मोहन मोह लिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे नानक ठाडे चाह है प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार बसंत महला पहला मन पुल्लो परमस आए जाए अत लुब्ध लुबानो बिख माए न अस्थिर दिसे एक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए मन पुल्लो समझस साच नाए गुरु शब्द विचारे सहज पाए रखाओ मन पुल्लो परमस पावर तार बिल बिरथे चाहे बहु विकार मैग जो फासस कामहार कड़बंधन बाध्यो शीस मार मन मुग्धो दादर भगत हीन दर पलट सरापी नाम बीन ताके जात न पाती नाम लीन सब दुख सुखाई गुणे बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राखे पत न साख तू आपे सुरता आप राख हर तारण देखे जाने आप आप पुराए किस कहो जाए गुर मिले बिरथा कहो माए अब गुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सदगुर मिले मत उत्तम होए मन निर्मल हो में कड्डे तोए सदा मुक्त बंद न सके कोए सदा नाम खाने और न कोए मन हर के भाणे आवे जाए सब में एको केश पहन न जाए सबको वरते हुक्म सुमाए दू सू सब तिसर जाए तू अपुल ना पुलो कदे नाहे गुर शब्द सुनाए मत अगाहे तू मोटो ठाकुर शब्द माहे मन नानक मानिया सच सलाहे

तै लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना बीचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवां, अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत डंड, गोविंद पजो

काम क्रोध मन बस किया, सुपने नाम न हर लिया, कब ही राजा कब मंगन हार, दू सुख बांधो संसार, मन उदरण का साजन आहे, पाबंदन नित पोत जागे, ईठ मीत को सखा नाहे, आ बीज आपे ही खाहे, जाके तीने होत बेकार, ते छोड़ चलिया खिण मैं गवार, माया मुए मोह भरमिया, किरतरे कर करमिया, करने हार।

देव जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागे सोई सार, ए देही के अधिक काम। कह कबीर पज राम नाम, जो एक खसम है जाया।

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए तो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहोगे।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरै ना लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर।

सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तीन जन के हर मार कढे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु।

आप गवादु नित नित जागरण करो, सदा सदा आनंद जाप जुगदीसोरा, मन इच्छे फल पावो, सबे फल पावो, धर्म अर्थ काम मोख, जन नानक हर स्यो मिले, हर भगत तोरा, सारग महला चौथा, जप मन माधो मधुसूदनो, हर श्री रंगो परमेश्वरो, सत परमेश्वरो प्रभ अंतर जामी, सब दुखन को हंता, सब सुखन को दाता, हर प्रीतम गुण गाओ, हर हाओ, हर कड़ कटे कड़ बसता, हर जल तले घर बसता, हर थान सनंतर बसता, मैं घर देखन को चाओ, कोई आवे संतो, हर का जन संतो, मेरा प्रीतम जन संतो, मुए मार्ग दिखलावे, तिस जन के हों, मल मल धोवा पाओ, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया, मेरे मन तन आनंद पए, मैं देखिया हर राव, जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीशर कृपा पई, मैं अनदनो साध साध सदा हर जपिया हर नाव, सार्ग महला चौथा, जप मन निरपो, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूर्त, आजोनी संप

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान, ससृढ़ का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पिए त्रिवतासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संत हो, जो भक्त जिना की पत राखे, वेत कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यो जल की, सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाव्या तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक स्ते लाख लाख।

हार गाव दुलभ जन्म किरंकाल पायो जातो कौडी बदलहा काथूरी को गाक आयो लाद्यो कालर बिरख जिवगा आयो लाभ लबन के ताई ऊंठा गौरी से उर्ज पहा काज बादरे लाल खोई है फिर अवसर कद लगा सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़े दास पजहा आई मस्ट जड़वत की न्याय ज्यो तस्कर दर सानेगा आन उपाव न को सूज हर दासा सरणी पर रखा कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले औगन मेड़ तरहा सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रे

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी वेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरुख मिलाई, प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर तब करता नेमख नेमख गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रायन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही, तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सुहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु।

रोग सोग तेरे मिटे सगल अग, निमख हिए हर नाम ते आए अरहाव, छोड़ सियानप बोच तराई, साधु सरणी जाए पाए, जो होए कृपाल दीन दुख पंजन, जमते होवे तरमराए, एक सबेन नाही को दूजा, आन बियो लवे लाए, माग पिता भाई नानक को, सुखदाता हर प्राण साए, सारग महला पंजवा।

सुख सार समागम कोड बैकुंठे पाए रघाव दुलाभ दे जब होत पुनीता जंग की त्रास निवारे महापत्ते पातक उतरे हर नामा उर तारे जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा को नानक पाईगे वडपागी मन तन हुए बेगासा सारग महला पंजवा दो पदे कर चौथा एक ओंकार सदगुर प्रसाद मोहन कर आवहो करो जुदरिया मान करो अब महाने बोलो पूल चूक तेरी प्रेत्रिया रघाओ निकट सुनो अर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाए पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमक जे बिसरे स्वामी जानो कोट दिस लख बरिया साध संत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सारग महला पनवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहा देह नाओ बलिहारी रखाओ चौ दिस फूल रही बिखिया बिख गुर मंत्र मूख गरड़ारी आदे राख्यो करे अपना ज्यो जल कमला अलपारी हाओ नाही किस मैं क्या हुसा तब तुम ही कल तारी नानक पाग प्रयोगर पाछे राग संत सदकारी सारग महला पंजवा अब मोहे सर्प पा बिरकाते करण कारण समरत स्वामी हर एक स्ते मेरी गाते रघाओ देखे नाना रूप हो रंगा अन नाही तुम पाते दे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रम तो हार जो परे हो तो गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेगानी राते सारग महला पंजवा अब मोहे लब देव है घर टेका गुर दयाल पय सुखदाई अंधले मानक देखा रखाओ काटे अज्ञान तेमर निर्मलिया बुद्ध विगास बबेका ज्यो जल तरंग फेन जल हुई है सेव कु ठाकुर पय एका जय ते उठ्यो तय ही आयो सभी एक एका नानक दृष्ट आयो सब ठाई प्राण पति घर समका सारग महला पंजवा मेरा मान एक ही प्रेम मांगे पे आयो सब थान देश प्रे रोम ना समसर लागे रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन पेसो दिष्ट ना करे रुचांगे हर चाहे प्रे प्रेम खुटेरे जो आल कमला लोभांगे गुण निधान मन मोहन लालन

आप मोरो ठाकुर स्यो मन माना, साध कृपाल दयाल पय है, यो छेद्यो दुष्ट बेगाना रखाओ। तुम ही सुंदर तुम्हें सियाने, तुम ही सुगर सुजाना, सगल जोर अर ज्ञान ध्यान एक, निमकन कीमत जाना। तुम ही नायक तुम्हें शत्रपात, तुम पूर रहे भगवाना, पावो दान संत सेवा, हर नानक सब कुरबाना।

छूटते गुर की सुहागन हर पायो सुगड सुजानी। जे कर्म बैसन नहीं पावत सो थान मिलो बासानी। उनके बस आयो भगत बच्छल जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन मानिया तब चूकी कान लुकानी। सारग महला पंजवा अब मेरो पंचा ते संग टूटा। दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रगाओ। बेखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख छू रूटा। बेखम गार कर पहुंचे नाही संत सांत पै लूठा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल आखूटा। जन नानक प्रभु कृपा तारी तो मन में हारस कूटा। सारग महला पंजवा आब मेरो ठाकुर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया उरजायो ज्यो जरमीना। रगाओ काम क्रोध लोभ मद मस्तर ए अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरड़ाए हर औखद गुर दीनो तो मिलो सगल पर बीना। गे तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज कर पाया

खुल्यो कर्म पयो पर गासा काट काट हर घर डीठा रखाओ पार ब्रह्म आजोनी संपो सर्व थान कट डीठा पयो प्राप्त अमृत नामा बाल बाल प्राव चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी की ये सगल तीर्थ मजनीठा कहो नानक रंग चलूल पय है हर रंग न लय मजीठा सारग महला पंजवा हर घर नाम दियो गुरसाते निमुख बचन प्रेही रे बस्यो सगल भूख मेरी लाथे रगाओ किरपा निदान गुण नायक ठाकुर सुभ समूह सब नाथे एक आस मोय तेरी स्वामी और द्वितीय आस बेराथे नैन त्रिप तसे दिग दर्शावा गुर कर तारे मेरे माथे कहो नारक मैं अतुल सुख पाया जन्म मरण पै लाते सारग महला पंजवा अरे मूड़े आन कहे कत जाई संग मनोहर अमृत है रे भूल भूल बिख खाई रगाओ प्रभ सुंदर चतर अनूप विधाते तिस रुच नहीं राई मोन स्यों बाबर मन मोयो झूठ ठ गौरी पाई पयो दयाल कृपाल दुख हरता संतन स्यों बने आई सगल निदान करे मैं पाए कहो नानक जोत समाई सारग महला पंजवा ओं प्रेपीत चीत पै लरिया जो तो बचन दियो मेरे सदगुर तो मैं साज सी गरिया अरगाओ हम भूले तुम सदा अपूला हम पतत तुम पतत उदरिया हम नीच बिरख तुम मैं लागर लाज संग संग बसरिया तुम गंभीर तीर उपकारी हम क्या बपरे जंतरिया गुर किरपाल नानखर मिलो तो मेरी सूख से जरिया सारग महला पंजवा मन ओए दिन स तन परवाना सब ते करी संजोग सुहावे सदगुर संग गयाना रगाओ तन सुभाग तन सुहागा तन दिर जिन माना यो मन तुमरा सब गृह तन तुमरा हियो कियो कुर्बाना कोट लाख राज सुख पाए एक निमक पेख दृष्टाना जो कहो मुखो सेव के बैसिए तुग नारग अंत न जाना सारग महला पंजवा आप मोरो सहसा दुख गया और उपाव सगल त्याग छोड़े सदगुर शरण पया अरहाओ सर्व सिद्ध कार्य सब सबरे अंग रोग सगल की खया ओड़ पराध खिन मैं खौ पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने।

प्रभ मेरो एक पुत सदा सहाई, मनमोर मेरे जी को प्यारो, कमन कहा गुण गाई रहाओ। खेल खिलाए लाड लाडावे, सदा सदा अनदाई, प्रद पाले बारक की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकिए, बिसर न कब हो जाई। कहो नानक मेल संत संगत ते, मगन पय लिवलाई, सारग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइये, आस न अवर कहू की कीजे, सुखदाता प्रत्याये रखाओ, सुख मंगल कल्याण जिसे कर, तिसकी सरणी पाइये, तिसे त्याग मानुख जो सेवै, तो लाज लोन हो जाइये, एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मिल मत बुद पाइये।

कार की प्रभ अपने काढ़ लिया दिख के रहे अमृत नाम औखध मुख दीनो जाए पया गुर पैरे कम उपमा कहो एक मुख निर्गुण के दाते रहे कार सिल्क जो अपना कीनो नानक सुख कन्हेरे सारग महला पंजवा प्रसिमरत दुख बिनासी पयो किरपार जी सुखदाता होए सगल खलासी रघाव आवर न को सूजे प्रभिन कौ को किस पै जासी ज्यो जानो त्यो राखो ठाकुर सब कुछ तुम ही पासी हाथ दे राखे प्रभ अपने

जब भूखो तब भोजन मांगे हकाए सुख किनारे तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटकत हुए रवारे कवन बसेरो दा दासन को

गुलाल लाडले सहज सहज गुण गायो रगाओ गुरबचनात कृपाद कृपा ते बौर नकत हूं तायो रेत उपाद समासु आसन भगत वशल ग्रे पायो नाल विनोद कोड आनंदा सहज सहज सुमायो करना आप करामन आपे कहो नानक आप आयो सारग महला पंजवा अमृत नाम मने आधारो जिन दिया तिसके कुर्बाने गुरपूरे नमस्कारो रगाओ बूझी तृष्णा सहज सुहेला काम क्रोध बिख जारो आए न जाए बसे जे ठार जे आसन रंकारो एके प्रगट एके गुप्ता एके तुंदुकारो आद मद अंत प्रसोई को नानक साज विचारो सारग महला पंजवा बेन प्रभ रहन न जाए करी सर्व सुख ताहू के पूर्ण जाके सुख हरी रगाओ मंगल रूप प्राण जीवन तान चिमृत अंध कना वड समर्थ सदा ससंगे गुण रसना कमल पना थान पवित्रा

काहू काहू अपनो ही चित आवे, जो काहू को चेरो होवत ठाकुर ही पै जावे रगाओ। अपने पै दुख, अपने पै सुख, अपने ही पै बिरता, अपने पै मान, अपने पै ताना, अपने ही पै अर्था। किन ही राज जोबन तन मिलख, किन ही बाप मै तारी, सर्व थोक नानक गुर पाए पूर्ण आस हमारी। सार्ग महला पंजवा। झूठो माया को मदमान, त्रो मोह दूर कर बपरे, संग उपाले जान रगाओ। मिथ्या राज जोबन अर उमरे, मीर मलक अर खान, मिथ्या कापर सुगंध तराई, मिथ्या भोजन पान। दीन बंदरो दास दासरो, संते की सारान, मांगन मांगो होए अचिंता,

दिवस चार के दिसे संगी, ऊहा नाही जय पारी, तिन स्यो राच माच हित लायो, जो काम नहीं गावारी, हो नाही नाही किश मेरा, ना हमरो बस चारी, करन करावन नान के प्रभ, तंतन संग उधारी, सारग महला पंजवा, मोनी मोहत रहे न होरी, साधक सिद्ध सगल की

अंधकूप में पतत होत जग संतो करो परम गद मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

खई तुम तारे सुमत संग तुम्हारे पाई अनक जोन भ्रमते प्रा बिसरत सास सास गर गाई जो जो संग मिले सा

लगाओ जाके सूद परो ए जनता इस प्रभु का जस गाव हो सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना आन कहां पे जाओ सबर सेवा स्वामी मेरे की मन बा

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, गृह अंध कूप ते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिला।

पंच दोख शिद्र या तरम है विखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय फरणी मन बांचित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम सगत

छोड़ो कपट होए निर्वैरा तो प्रसंग निहारे सतन वंजो सतन संचो कबू न आवो हारे खात खर्चत किश निखुटत नाही अगंत

पंडित तो सूरा सो दाना साध संग जिन हार घर जप्यो नानक सो परवाना सारग मोहल्ला पंजवा हर घर संत जिना की जीवन दिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रखाओ संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीमन हर रंग रंग पय मन लाला राम नाम रस खीवन जो मीना जल से उर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातर्क की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन।

ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमेयो मनोर हर रस जप नानक हर विस्माद सारग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिनस रहनी थकत नाही कते नाही छोट रघाव मां बजर बेख ब्यादी

तीर सब हुट्यो साध गयो तत घाट रहाओ अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट तेल भग करत करत पुछतावे कभू न साके शांत निंदक जमदूती आए संगारेओ देवे मूंड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई मन अपना की नू फाट सारग मोहल्ला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जनका राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ उसका कहया कोई न सुनई

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रघाव साधक सिद्ध सगल मुन लोचे बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम जा हृदय वसे पए भंजन ते जान।

अनद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो ने हो रहाओ प्यार कुंट दैद सजल निध ऊन थाओ ना के हो कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो सत सत हर सत स्वामी सत सा संगे हो सत तेजन जिन प्रतीत उपजी ना

और जोन ना पाए पय कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पाई लगा प्रसो रंग सारग महला पनवा माई री पेख रही बिस्माद अनह तुनी मेरा मन मोयो अचरज ताके स्वाद रहाओ माद पिता बंद पगे सोई मन हर को अहलाद साध संग गाए गुण गोविंद बिन सो सब प्रमाद।

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम

गाय बिनसी सब अवमानी रगाव तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्स त्यानी निकट वर्तन ससदा सुहागन सहज साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साग तुम्हें संग राखन हार तुम्हें जगदीश रखाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी पुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रभ नानक सेजन दर गए माने सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औद बिति असार नरक उधर प्रमंत जल तो जमे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार बिना सदगुर बूझ नाही ता मोह महा अंधार बेट खोरी खाए मुठो कितना सिरजनहार गोविंद गुप्त हो रहे न्यारो मातंग मत अंकार कर कृपा पर संत रखे चरण कमल आधार कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार सारग महला पंजवा कर सेवा पड़ताल एक ओंकार सदगुर प्रसाद शुभ वचन बोल गुण अमोर किंकरी विकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती महा केल रगाओ सुपनरी संसार मिथनी विस्तार सखी काए मोहे मोहे ली प्रे प्रीत हृदय मेल सरबरी प्रीत दयार प्रसदारी दयार काए आन आन रुचिए हर संग संग खचिए जो साध संग पाए कौ नानक हर त्याए अब रहे जमे मेल सारग महला पंजवा कंचना बहुत दत करा पूम दान अर्प तरा मन अनक सोच पवित्र करत ना हीरे नाम तुल मन चरण कमल लागे रगाओ चार वेद जेब पने दस अष्ट खष्ट श्रवण सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे परत संद सोच चार किरिया कुंट निराहार।

मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते आराम राम सार भूत नानक तत् विचारे सारग महला पंजवा नाम भगत मांग संत त्याग सगल कामी रगाओ प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आनदा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पग राओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोहा एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिखम गार तोरी सारग महला।

काम करी सब त्याग के हों शरण परोगी। नानक स्वामी घर मिले हों गुरमनाब होगी। सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी, जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग के मन संतन पाए बेचायो। जात जन्म कुल खोइए हों गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी। गुरमुख उपदेसिया नानक सेव एक हरी, सारग मोहल्ला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीड़ हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ। ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू, ने बर्न बर्न ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू। सारग मोहल्ला पंजवा करत केल बिखे मेल, चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर। नौपरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत, बिन गोपाल तोहे रघाओ। तीन पौने लपटाए रही, काज कर्म ना जात सही। उन मत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे, उदरे हर संत दास काड़ दीनी जमकी फास। पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद राग सारंग महला नामा। हर बिन तेरो को ना सहाई, कां की माल पिता सुध बनता को काहू को पाई। रघाओ तन धरणी हर संपत सगरी, जो मान्यो अपनाई। तन छूटे का संग न चाले कहां ताए लपटाई, दीन दयाल सदा दुख भंजन तस रुचना बढ़ाई। नानक कहत जगत सा मिथया जो सुपना रहे नाई। सारंग महला नामा कहा मन दिखिया स्यों लपटाही, या जग में कू रहन न पावे एक आवे एक जाही। रघाओ का को तन तान संपत का की का स्यो निहो लगाई, जो दिसे सो सगल बिनासे ज्यो बादर की शाही। तज अवमान शरण संतन गहो मुक्त होए शिन माही। जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपने पी नाही। सारंग महला नामा कहा नर अपनो जन्म गवावे, माया माद बिखे अरस रचियो आराम सरन नहीं आवे। रघाओ यो संसार सगल के सुपनो देख कहां लोभावे, जो उपजे सो सगल बिना से रहन न को उपावे। मितया तान साचो कर मान्यो

नानक से जन थाए पाए गए, जिनकी पद पावे लेखे। सारग महला पंजवा, अष्टपदियां कर पहला। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, गुसाई प्रताप तुहारो डीठा। करन करावन उपाय सुमावन, सग छत्रपद बीठा रखाओ। राणा राओ राज पै रंका, उन झूठे कहन कहायो। हमरा राजन सदा सलामत, ताको सगल कटा जस गायो। उपमा सुनो राजन की संतो, कैत जेद पाहुचा। बेसुमार वर्षा दा तारा, ऊचे ही ते ऊचा। पावन परोयो सगल कारा, पावक काष्ट संगे। नीर तरण कर राखे एकत, कोई न किस जी संगे। धड़कड़ कथा राजन की चल है, कर कर तुझे उमाहा। जी जन सब पाछे करया, प्रथम रिजक समाहा। जो कुछ करना तू आपे करना, मसलत काहू दीनी। आनक जिदन का करे दिखाए, साची साखी चीनी। हार भगतां का राखे अपनी, दीनी नाम डाई। जिन जिन करी अवग्या जन की, ते तै दिए रुड़ाई। मुक्त पए सा संगत कर, तिनके अवगुण सब परखरिया। तिनको देख पए किरपाला, तिन पवसागर तरिया। हम नाने नीच तुम्हें बड़ साहेब, कुदरत कौन बिचारा। मन तन शीतल गुरदर्श देखे, नानक नाम अधारा। सारग महला पंजवा, अष्टपदी कर छेवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आगम अगाध सुनो जन कथा। पार ब्रह्म की अचरज सभा रखाओ, सदा सदा सतगुर नमस्कार। गुर कृपा ते गुण गाए अपार, मन पीतर होवे परगास। ज्ञान अंजन अज्ञान विनाश, मित नाही जाका विस्तार। शोभाता की अपर अपार, अनक रंग जाके गने ना जागे। सोग हरख दोहु मै नागे, अनक ब्रह्मे जाके वेद तुन करे। अनक महेश बैस ध्यान करे, अनक पुरख

ओंकार सतगुर प्रसाद सब देखिए अनपय का दाता कर कर पूर्ण गए अल्पाता कर कर पूर्ण कर विस्तीर्ण जल तरंग जो रचन किया हावरस माने पोक टाणे आनन बिया कोतिया हर रंगी एक रंगी ठाकुर संत संग प्रव जाता नाग दर्श लीना ज्यो जल मीना सब देखिए अनपय का दाता कौन उपमा देओ कवन बड़ाई पूर्ण पूरे ओ सर्वठाई पूर्ण मन मोहन कड़कड़ सोहन जब किंचे तब शाई क्यों ना अराधो मिलकर साधो करी मोतक बेला आई अर्थ दर्भ सब जो किश दिसे संग ना कछु जा।

अपने पे आया सारंग की वार महल्ला चौथा हराए महमे हसने की तोन एक ओंकार सदगुर प्रसाद श्लोक महल्ला दूजा।

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस भंडार वड्डा कर सालाही है, अंत न पारावार पौड़ी। हर का नाम निधान है, सेवे सुख पाई। नाम निरंजन उच्चरा पद स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवस होए,

का जत होए, ब्राह्मण चुली संतोख की गिरही का सतदान, राजे चुली न्याव की पढ़िया सच ध्यान, पानी चेतना तो पई मुख पीते तिख जाए, पानी पिता जगत का फिर पानी सब खाए, पौड़ी नाए सुने सब सिद्ध है रिद पिछे आवे, नाए सुने नौनद मिले मन चिंदिया पावे, नाए सुने संतोख होए कवला चरण त्यावे, नाए सुने सहज उपजे

दुख जमण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पढ़ पढ़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलिया सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मोहल्ला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देह जा जियो विचों कढ़िए पसु पर आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे श्लोक महला पहला कर नारायण सभा नाल

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसमी दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्तर ही जे पांडे, और बहुत सिख क्या दी जाए पौड़ी, खूब तरा जे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत बधाएं दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्तर ना विस है, बहु प्रीत लगाया, वेख दिया की माया तोहे गई, पछते

फिर हुए ना विनाश, हर से तीरंग रव रहे सब सास गिरस, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, ओए कृपा करके मेलियन नानक हर पासा। श्लोक महला तीजा, जिच ओ मन लहरी विच है होम में बहुत अहंकार, सबदे साधन आवई नाम न लगे प्यार, सेवा थाए न पवी तिसकी खब खब होए खुवार, नानक सेवक सोई आखिए जो सिर तरे उतार, सतगुर का पाणा मन ले शब्द रखे उतार। महला तीजा, सो जापो तब सेवा चाकरी जो खसमे पावे, आपे बगसे मेल लय आपत गवावे, मिलिया कदे ना विछड़े ज्योति ज्योत मिलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिस आप बुझावे।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिमचिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी हो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरियावली, आन जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए, हर से ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए, हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिन्ना गुरमुख नाम आराध्या, तेना दुख भुख ले जाए, जन नानक त्रिवते गाए गुण, हर दर्शन दियो सुपाए पौड़ी, गुरपूरे की दात, नित देवे चढ़े सवाइया, तो देवे आप दयाल, ना शपेश पाइया, हृदय कबल प्रगास, उन मन लिव लाइया, जे को करे उस दी रीस, सिरशाई पाइया, नानक अपड़ कोई ना सकई, पूरे सदगुर की वड्याई। श्लोक महला तीजा, अमर वे प्रवाहो है, तिस नाल सियाणप ना चलई, ना हुजत करनी जाए, आव छोड़ सरनाए पवे, मन ले रजाए, गुरमुख जम डांडन लग गई, होमे विच्चों जाए, नानक सेवक सोई आखिए, जे सच रहे लिवलाए, महला तीजा, दात जोत सब सूरत तेरी, बहुत सियाणप होमे मेरी, बहु कर्म कमावे, लोभ मोह व्यापे, होमे कदे ना चूके फेरी, नानक आप कराए करता, जोत पावे साई गल चंगेरी। पौड़ी महला पंजवां, सच खाना सच पहनना,

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचय समझे नहीं मूड, तान तरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना होड़ माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते त्रंग त्रंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख ताप त्रिमोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फोन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उबजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, काम ना बिसरयो, क्रोध ना बिसरयो, लोभ ना छूट्यो देवा, पर निंदा मुक्ति नहीं छूटी, निफल पई सब सेवा, बाट पार कर मूस बिरानो, पेड़ परे अपराधी, जे परलोक जाए अब कीरत, सोई अविद्या साधी, हिंसा तो मते नहीं छूटी, जी दया नहीं पाली, परमानंद सा संगत मिल, कथा पुनीत ना चाली, शाड़ मान हर विमुखन को संग, सारंग महला पंजवा सूरदास, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर के संग बसे हर लोक, तन मन अर्प सर्वस सब अर्प्यो, अंध सहज तुन चोक रगाओ, दर्शन पेख पय निर्भखई, पाए गए सगले थोक, आन बस त्यों काजना कछुए, सुंदर बदन अलोक, श्याम सुंदर तज आन जो चाहत, ज्यो पुष्टि तन जोक, सूरदास मन प्रभत लीनो, दिनो यो परलोक, सारंग कबीर जियो, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, हर बिन कौन सहाई मन का, माल पिता पाई सुध बनता, हित लागो सब फन का, अरहाओ आगे कौ किछ तुलखा बंद हो, क्या प्रवासा तन का, कां विसासा इस पांडे का, इतन लगे ठनका, सागल धर्म पुन फल पाव हो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पं गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही, आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्छे हो ही, जे ही रुत काया सुख तेह, तेहो जे ही देही, नानक रुत सुहावी साई, बिन नावे रुत के ही। मलार महला पहला।

जिन हर प्रभ आन मिलाया रहाओ। नौतन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, आन दिन भगत सुहावी। मुक्त पए गुरदर्श दिखाया, जो जुग भगत सुपावी। हम थारे तिर पावन जग तुमरा, तू मेरा हो तेरा। सतगुर मिलया निरंजन पाया, बहोर ना पवजल फेरा। अपने पिर घर देख विगासी, तौ तन साच सी गारो। अकुल निरंजन स्यों सच साची, गुरमत नाम आधारो। मुक्त पई बंधन गुर खोले, साबद सो

गुण माया यन जगत भोलाया, जन्म मरण का सहसा, गुर प्रसादी एको जाने, चूके मनो अंदेसा, हम दीन मूल।

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, आनदन कंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लवटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए।

सगुर देख मेरा मन बिकस्यो जन घर पेट्यो बनवारी जगाओ। जिन ऐसा नाम सारिया मेरा हर घर जिसके कुल लागी गारी हर जिसके कुल प्रसूत न करियो तिस विधवा कर्म है तारी हर घर आन मिलावो गुर साधु जिस अहिंस हर उर तारी गुर डीठे गुर का सिख बिकसै ज्यों बारक देख महतारी।

परे हमरे विच हमरी मैल साधु की तूर गवाई तीर्थ 68 मज्जन नाई सत संगत की तूर परी उड़ने करी तब दुर्मत मैल गवाई रघाव जाहर नवी तपे पाघीर त्याणी केदार थाप्यो महसाई कांसी कृष्ण चिरावत गाऊ मिल हरजन शोभा पाई।

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ हो पूघर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहसे, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक ले

हम एक गिनथ बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रखाओ। उनके संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। इओ मन देख किए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सुख पाया बन ना साको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देहो मिलाई। सगल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ। एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदाउद पयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई। सुख उपजे दुख सगल बिनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठिन पै सागर हर नानक चरण तिहाई। मलार महला पंजवा कानघर बरस सगल जग छाया पए किरपाल प्रीतम प्रा मेरे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ। मिटे कलेस तृष्ण सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया साध संग जन्म मरण वारे बौर न कतहू ताया। मन तन नाम निरंजन रातो चरण कमल लिवलाया अंगीकार कियो प्रभु अपने नानक दास शरणाया। मलार महला पंजवा बिशरत क्यों जीवे ओए जीवन किते उलास आस मिल।

प्रातन साधु संग उधारे रखाओ। देव कोल दैंत कोल जाख किन्नर नार सागर उतरे पारे। जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध मां बिखिया रस इनते पए निरारे। दीन दयाल जपे करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर घाट। नाम रास संजी कर जम स्यो जाओ ना जम कै घाट। रखाओ तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे प्रम के खुले कपाट। बेसुमार साहु प्रापाया ला चरण निध खाट। शरण गई अचुत अवनासी किरवे काढ़े है शाट। काल कलेश मिटे दास।

सेवक पूर्ण भगत चेरानो रहाओ। ए त्योत डोल डोल शरम पायो, तान तान होत बेरानो। लोग दोराए करत ठगियाई, होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच, ए संकट फिर आनो। कहो नानक पान प्रवतार हो, साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा, दुष्ट मोए बिख।

दर्श प्यास मेरो मन मोयो, अर पंख लगाए मलीजै रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस।

बाजे बजे मृदंग अनाद कोकलरी आराम नाम बोले मदर बैन अत सोईया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रे अमोग तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रयो प्रीतम थिया मलार मगल्ला पंजवा मन कने प्रमे बने।

हू गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ तुनत ललत गुनाग अंक पांत बोविध रूप दिखावनी नीकी गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी साध संग रामैया।

होए आनंद सगल भाग रहाओ। संत संगे मन परफड़े मिल मेघ तर सुहाग। कान कोर प्रीत मोर चित चातरक बूंद ओर। ऐसो हर संगे मन मोह त्याग माया तोहो। मिल संत नानक।

बिन जल प्यास न जाई, मीन निवास उपजे जल गीते, सुख दुख पुरब कमाई, खेन तेल रह न सकै पल जर बिन, मरण जीवन तिस ताई।

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती, गुर पावे प्रयो पाई। प्रयो नाले सदगी सच संगे, नदरी मेल मिलाई।

प्यारे बिन इखे न रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई, पेर नजीक ना बूझे बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कहो नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कार दूजा, एक ओंकार।

मन रे सतगुर सेव समाए, वड़े पा गुर पूरा पाया, हर हर नाम त्याए रहाओ, हर अपने पाने सृष्ट उपाई, हर आपे दे आधार, हर अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार, हर के पाने सतगुर पेटिया, सब जन्म सवारन हार, वाह वाह बाणी सत है गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह कर प्रसाद आई है तेस जेवड़ अवर न कोए, आपे बगसे मेल लय कर्म प्राप्त होए, साचा साहेब मारो सतगुर दिया दिखाए, अमृत वरसै मन संतोखिए सच रहे लिवलाए, हर के नाए सदा हरियावली फिर सुके ना कुमलाए, बिन सतगुर किने ना पायो मन वेखो को पतियाए, हर कृपा ते सतगुर पाइए भेटे सहज सुपाए, मानमुख परम भुलाया बिन पागा हर तन ना पाए, त्रै गुण सबा तात है पढ़ पढ़ करे विचार, मुक्त कदे ना होवई न पाएन मोह द्वार, बिन सतगुर बंधन ना टुट ही नाम न लगे प्यार, पढ़ पढ़ पंडित मुनी थके वेदां का अभ्यास, हर नाम चित ना आवई न निज कर होवै वास, जमकाल सिरो ना उतरै अंतर कपट विनाश, हर नावे नू सब को प्रताप दा विण भागा पाया ना जाए, नदर करे गुर पेटिए हर नाम वसे मन आए, नानक नामे ही पत उपजे हर सोरहां समाए, मरार महला तीजा अष्टपदी

पूजा लाया, दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया, ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया, दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया, श्लोक महला दूजा सामन आया हे सखी।

गुर के शब्द विचारी है, गुण में रहे समाए, अपना आप तोलसी, आपे मिले मिलाए, तिसकी कीमत ना पवे, कहना किशु ना जाए, हों बलिहारी गुर अपने, जे सच्ची बूझ दित्ती बुझाए, जगत मुस्ते अमृत लुटिए, मनमुख बूझ ना पाए, विणनावे नाल ना चरसी, जासी जन्म गवाए, गुरमती जागे तिनी कर राखिया, दूता का किश ना वसाए, सलोक महला तीजा, बा बीहा ना बिललाए ना तरसाए, यो मन खसम का हुक्म मन, ना हुक्म मने तिख उत्तर है, चढ़े चवगल वन महला तीजा, बाबीहा जल में तेरा वास है, जल की माए फिराहे, जल की सार ना जानई, ता तू कुकण पाहे, जल थल 14 वर्ष दा, खाली कोथा हो नाहे, एते जल वर्ष दे तिख मरे, भाग तिना के नाहे, नानक गुरमुख तिन सोझी पई, जिन वसिया मन माहे पौड़ी, नाथ जती सिद्ध पीर किने अंत ना पाया, गुरमुख नाम प्याए तुझे समाया, जो शक्ति गुबार तिस ही पाया, जला बिंब असराल तेरे वरताया, नील अनील अगम सरजीत सवाया, अगन उपाई वाद ओख तिहाया, दुनिया कैसर काल दूजा पाया, रखे रखनहार जिन शब्द बुझाया, सलोक महला तीजा, यो जल सब ते वरसदा, वरसे पाए सुखाए, से बिरखा हरियावले, जो गुरमुख रहे समाए, नानक नदरी सुख होए, इना जनता का दुख जाए, महला तीजा, पिन्नी रैन चमकया, वुठा शैबर लाए, जित वुठे, आंतन बहुत उपजे, जां सो करे रजाए, जिर खादे मन तृप्ती है, जियां जुगत समाए, यो तन करते का खेल है, कदे आवे कदे जाए, ज्ञानियां का तन नाम है, तद ही रहे समाए, नानक जिनको नदर करे,

पौड़ी। सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया, अंत खलोआ आए ते सतगुर अगे कालिया। होय न सके जमकाल सच्चा रखवालिया, गुरसाखी जोत जगाए दीवा बालिया।

सच्चे शब्द निहालिया, नानक नाम निदान है पूरे गुरदे खालिया। सलोक महला तीजा, वाह भी है हुगम पछाणिया, गुर कै सहज सुपाए, मेघ वरसते दया कर, गूढ़ी शैबर लाए। बाबी के कूक पुकार रह गई, सुख वस्या मन आए। नानक सो साल आई है जे देंदा, सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा, चातरक तू ना जान ही, क्या तुद विच तिखा है, किल पीते तिख जाए। दूजे पाए परमया, अमृत जल पल्ले ना पाए, नदर करे जे अपनी ना सतगुर मिले सुपाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रहा सुमाए पौड़ी। एक वाणखण बैसे जाए, साधना देव ही, एक पाला ककर पन्न शीतल जल हेव ही। एक पसम चिड़ावे अंग, मैल ना तोव ही। एक जटा बिगट बिगराल, कोल कर खोव ही। एक नगर फिरे दिन रात, नींद ना सोवगी। एक अगन जलावे अंग, आप विगोवगी। विणनावे तन शार, या कह रोवगी। सोहन खसम द्वार, जे सदगुर सेवगी।

अंधेका नाव पारखू, एवे करे गुवाओ, इल्तका नाव चौधरी, कूड़ी पूवे थाओ, नानक गुरमुख जानिए, कलका यो नियाओ मोहल्ला पहला, हरणा बाजा तैसकदारा, इना पढ़िया नाओ, फंदी लगी जात पहायन, अगे ना ही ताओ, सो पढ़िया सो पंडित बिना जिनी कमाना नाओ, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे ता उपर हो वेशाओ, हराज सी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहिंदा पायन खाओ, रत पित कुत्ते हो चट जाओ।

पौ उपज पाइये मोह द्वार, पाए ते सहज पाइये मेरे ज्योति जोत अपार, पाए ते पय जल लंघिए गुरमति विचार, पाए ते निरपो पाइये जिदा अंत न पारावार, मनमुख पय की सार ना जाननी तृष्णा जलते करे पुकार, नानक नावे ही ते सुख पाया गुरमति उरतार, श्लोक महला पहला रूपे कामे दोस्ती भुखे साधे गंड, लबे माले कोल मिल मचल ऊंगे सौण पलंग, पौके कोप खुआर हुए

अकल मन गोर न मानी, मन कमीन कम तरीन, तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे अवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तुआना तू कुदरती आया, सगनानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत आछे।

पाल सहस्र फनी बासक से जवालुआ अठारे पार बनस्पति मालनी चिनमें करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख पर सेव जाचे सुरसरी सप्त समुंद जाचे कड़थली एते जी जाचे वर्तनी सो ऐसा राजा तिर पवन तनी जाचे कार निटवर्ती अर्जन त्रू प्रहलाद अम्बरीक नारद निज सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बाण वहिला एते जी जाचे है करी सर्व व्यापक अंतर हरी।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारं हृदय राम गोविंद गुण सारं हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानं तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न होए आनं तर तार अपवित्र कर मानिए रे

हम अचित अचेत न जाने गातमित गुर किए सुचित चितेन प्रभु दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिले मन प्रीतम कर देवो हीरा तेन हर के संत मिले हर मिलिया हम किए पतत पवेन हर के जन उत्तम जग कही है जिन मिलिया पाथर सेन जन की महिमा वर्ण न सको

सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जप पए दयाल। कहो नानक तो छूटे जंजाल, कानड़ा मोहल्ला पंजवां ऐसी मांग गोबिंद ते। तैर संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते रखाओ। पूजा चरना ठाकुर सरना, तोई कुसल जो प्रभ जी उपरना। सबर होते दुर्लभ देही, जाको सदगुर मया करेही। अज्ञान परम बिन से दुख डेरा, जाके हृदय बसे गुर पाए।

पूर्ण होवे आस। तानड़ा मोहल्ला पंजवां, साध संगत निधर को नाम, संग सहाई जी के काम रखाओ, संतरेन नित मज्जन करे, जन्म जन्म के किल बिख हरे, संत जना की ऊंची बानी, सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, साधु हर हरे गुण गाए, मान तन तन प्राण प्रभ के, सिमरत दुख जाए रखाओ। ई पूत कहां लोभ आवे, एक स्यो मन लाए, मां पवित्र संत आसन, मेरे संग गोविंद त्याय, सगल त्याग शरण आयो, नानक लेहु मिलाए। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, पेख पेग बिसाओ साजन, प्रभ अपना एकांत रखाओ। आन दा सुख सहज मूर्त, तिस आन नाही भांत, सिमरत एक बार हर हर, मिट कोट कसमल जांत, गुण रवंत दुख नस है, रिद पय अंत सांत, अमृता रस पीओ रसना, नानक हर अंग रात। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, साजना संत आओ मेरे, रहाओ आनदा गुण गाए मंगल, कसमला मिट जाए परेर, संत चरण तरो माथ है, चांदना गृह हुए अंधेर है, संत प्रसाद कमल बिकस, गोविंद भजो पेख नेर, प्रभु कृपा ते संत पाए, वार वार नानक ओ बेर। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, चरण शरण गोपाल तेरी, मोह मान तो परम, राख लीजे काट बेरी रखाओ। बूढ़त संसार सागर, उदरे घर सिमर रतनागर, शीतला घर नाम तेरा, पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा, दीन दर्द निवार तारन, हर कृपा निध पतत उदारन, कोड़ जन्म दुख कर पायो, सुखी नानक गुर नाम दृढ़ायो। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, तन ओ प्रीत चरण संग लागी, कोड़ जावता सुख पाए, आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ। मुए अनाथ दाह जन तेरा, अबर ओट सगली मुए त्यागी, भोर परम काटे प्रसिमरत, ज्ञान अंजन मिल सोबत जागी। तू अथाहो अद बड़ो स्वामी, कृपा सिंध पूर्ण रतनागी, नानक जाचक हर हर नाम मांगे, मस्तक आन तरयो प्रापागी। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कुचल कठोर कपट कामी, ज्यों जाने त्यों तार स्वामी रखाओ। तू समरथ शरण जोग, तू राखे अपनी कल तार, जाप ताप नेम सुसंजम, नाही इन विदे छुटकार, गर्त कोर अंध ते काढ़ हो, प्रभ नानक नदर निहार। कानड़ा मोहल्ला पंजवां, कार चौथा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुक्त मुझ तारे रखाओ। कामन कामन कामन गुण कही है, अंत नहीं किस पार है, लाख लाख

आंद रंग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार है। हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना, हर नाम हमारे कार्य सवार है। हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, पाव जल विखम नाम हर तार है। अगम पदार्थ लाल अमोला।

अंध उजियारा सहज समाज समायो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समरथ अथायो किरपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लायो कानड़ा महला पंजवा बूटत प्राणी हर जब तीरै बिनसै मोह परम दुख पीरै अरहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कद पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेटत नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मने सुख पाई है साध जना मिल हर

आओ गृह से सुहावी अंगन चैना तोरो री तोरो पांच दूतन स्यों संग तोरो आए ना जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिग सोरो।

तान मांगो तां लक्ष्मी सुध देहे मुगत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निधान पाए पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान। कानड़ा महला पंजवां करत करत चर्च चर्च चर्चरी चर्च।

माया पटल पटल है भारी, कर घूमन केर खुलावे गो, पाप कार मनूर सा पारे, दिग दुत्तर तरयो ना जावे गो, पाओ बैराग पया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावे गो, राम नाम घर पेटिए, हर रामे नाम समावे गो, अज्ञान लाए सवालिया।

है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मन गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो। रघाओ चलतो चले चले दह दह दिस, गुर राखे घर लिवलावे गो।

लोहा हिरन होवे संग पारस, गुण पारस को होए आवे गो रहाओ। सतगुर महापुरख है पारस, जो लागे सो फल पावे गो। ज्यों गुर उपदेश तरे प्रहलादा,

हमरी जेबा एक प्राभ हर के गुण अगम अथाहा हम क्यों कर जपे ए आणिया हर तुमड अगम अगाहा हर दियो प्रभु मत उत्मा गुर सदगुर कै पग पाहा सत संगत घर

तेरा जस स्वामी तिन काटे पाप कटोना तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत मुख वड वड भाग वडोना सब त्यावो आद सते जुगाद सते प्रतख सते सदा सदा सते जन नानक दास दसोना सरोक महला चौथा हमरे हर जग जीवना हर जप्यो हर गुरमंत हर अगम अगोचर अगम हर हर मिलया आए अचिंत हर आपे कड़ कड़ वर्तदा हर आपे आप बेअंत हर आपे सब रस भोगदा हर आपे कवला कंत हर आपे पिखया पाएदा साब सिट पाई जी जंत हर देव उदान दयाल प्रभ हर मांगे हर जन संत जन नानक के प्रभ आए मिल हम गावे हर गुण संत महला चौथा हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन हर धीर पौड़ी हर उत्तम हरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर हर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आ बुझाए सी जिस सदगुरु पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन नानक हर हर चाओ मान गुर तुठा मेले माए महला चौथा हर इकस स्थिति पिरहड़ी हर इको मेरे चित जन नानक एक आधार हर प्रभ इक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेस हर एको मत गुरमत हर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो हर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया सलोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुर मन्या जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर हर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर हर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर हर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा सलोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया थुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया

सदगुर प्रसाद ऐसो राम राय अंतर जामी, जैसे दर्पण माहे बदन परवानी रगाव, बसे कटा काट लीपना शीपे, बंधन मुक्ता जात ना दिसे, पानी माहे देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बीठल ऐसा, निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंग, गुर प्रसाद रामा राम रामे अंत न पाया, हम बारक प्रदपारे तुमरे, तू बड़ पुरख पिता मेरा माया, अरहाव हर के नाम असंग अगम है, अगम अगम हर राया, गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी, एक तिल ने कीमत पाया, गोविंद गुण गोविंद सद गावे, गुण गोविंद अंत न पाया, तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी, बो जपगे था न पाया, उस्तद करे तुमरी जनमाद हो, गुण गावे हर राया, तुम जल निध हा मीने तुमरे, तेरा अंत न कतहु पाया, जान कहो कृपा करो मसूदन, हर देवो नाम जपाया, मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है, जन नानक गुरमुख पाया, कल्याण महला चौथा, हर जन गुण गावत हसया, हर घर भगत बनी मत गुरमत, तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ, गुर के पाग सिमरो दिन राती, मन हर घर हर बसया, हर घर हर कीर्त जग सारी, घस चंदन जस कसया, हर जन हर घर हर लिवलाई, सब सागत खोज पया, ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक, पग नागन छोए जलया, जनके तुम घर राखे स्वामी, तुम जुग जुग जन रखया, कहां पया दायत करीब खीली, सब कर कर चर परया, जेते जी जन प्रव किए, सब कालय मोह ग्रसया, हर जन हर हर हर प्रव राखे, जन नानक सर

जगन्नाथ गुर उपदेशवर नाम ते आयो सब केल बिख दुख लाथे रखाओ रसना एक जग गाए न साके बहु कीजे बहु रसन थे बार बार खिन पल सब गावे गुण कह न सके प्रभु मन थे हम बो प्रीत लगी प्रभु स्वामी हम लोचे प्रभु दिखन थे।

सदगुर प्रसाद तेरे मान हर घर मान नैन बैन श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ इत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हे समान जद कता तद पेखिए हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण महला पंजवा गुरनाद तुन आनंद वेद कथत सुनत मुंजना मिल संत मंडली रहाओ ज्ञान ध्यान मान दान मन रसक रसन नाम जपत ते पाप खंडली जोग जुगत ज्ञान पुत सुरत शब्द तत् बेते जब तब अखंडली ओत पोत मिल जोत नान कशु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बे ताकी कहां करो हरत ध्यान ज्ञान सहस्त्र गया अजर पद कैसे जरो रखाओ बेसन महेश सिद्ध इंद्रा कैदर सरन परो काहू पे राज काहू पे सुरगा कोड मध्य मुक्त कहो कहो नानक नाम रस पाईए साधु चरण गहो कल्याण महला पंजवा प्राण पद दयाल पुरख प्राप्त सके गर्भ जोन कल काल जाल दुख विनाशन हर रखे रखाओ नाम तारी सरन तेरी प्रभु दयाल टेक मेरी अनाद दीन आसवंत नाम स्वामी मने मंत तुझ बिना प्रभु किशु न जानो सर्व जुग में तुम पछानो हर मन बसे निस्बासर हो गोविंद नानक।

रामो राम रवीजे, साधु साध साधन नीके, विल साधु हरंग की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थम मन को।

चरण तल दीजे, गुरमुख जोत पली शिव नीकी, आन पानी सगत परीजे, मैन दंत निकसे गुरबचनी, सार चब चब हरस पीजे, राम नाम

साधु साध साध मन प्रीतम बिन देखे रहे ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है खेन जल बिन फूट मरीजे। महा अपाग अपाग है जिनके जिन साधु तूर न पीजे। तिना तिसना जलत जलत नहीं बूझे डंड तरमरा एका दीजे। सब तीर्थ वर्त जग पुन

के कर्म नाही तर्म नाही नाही सुच माला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जाके बरत नाही नेम नाही नाही बकबाई गात अवध की चिंत नाही सदगुरु फरमाई जाके आस नाही निरास नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलिया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहिया दर प्रवान बिख अमृत दो सम कर जान क्या कहिए सर्वे रहया समाए।

जात जन मने पूछिए सच कर लिहु बताए, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए, जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाए, प्रभाती मुहला पहला जागत बिनसे मूठो अंधा, गल फाही सिर मारे धंधा, आसा आवे मनसा जाए, उर्जी ताणी किशना बसाए, जाग

प्रीतम मनमोहन आत्रसलार सगूड़ औरगाव ऊपर कूप गगन पनहारी अमृत पीवनहारा जिसकी रचना शोभित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रथ कमल बेगासे सदकर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई पसरी किरण रथ कमल बेगासे सदकर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मनमारी गुर प्रसाद प्रापाया आत्रस रंग चलू ले राती दूजा रंग न कोई नानक रसन रसाए राते रव रहया प्रवसोई।

लेव उर्मन नाम लगान, अमृत रस पिया गुर शब्दी, हम नाम मिटो कुर्बान, हमरे जग जीवन हर प्राण, हर उत्तम अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रखाओ, आभो संत मेरो मेरे पाई, मिल हर हर नाम वखान, कित विद क्यों पाइये प्रभ अपना, मोको करो उपदेश हर दान, सत संगत में हर हर वसया, मिल संगत हर गुण जान, वडे भाग सत संगत पाई, गुर सतगुर परस भगवान, गुण गावे प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान, जन नानक गौ गुर कृपा धारी, हर नाम दियो खिनदान, प्रभाती मोहल्ला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोले, सब रैन संभाले हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई, हम करे प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तूर रवाल, हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा, गुर पग चारे हम्बाल रखाओ, सागत कौ दिन रैन अंधारी, मोहे फाथे माया जाल, खेन पाल हर प्राबर दे ना वस्यो, रिन बंदे बहु विद बाल, सत संगत मेल मत बुद पाई, हाँ छूटे ममता जाल, हर नामा हर मीठ लगाना, गुर किए शब्द निहाल, हम बारक गुर अगम गुसाई, गुर कर कृपा प्रतपाल, बिख भौजल डुबदे काढ लिहो प्रभ, गुर नानक बाल गोपाल, प्रभाती मोहल्ला चौथा, एक खेन हर प्रभ कृपा तारी, गुण गाए रसकर सीख, गावत सुनत दो पै मुक्ते, जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक, मेरे मन हर हर राम नाम रस टीक, गुरमुख नाम सीतल जल पाया, हर हर नाम पिया रस चीक रखाओ, जिन हर हृदय प्रीत लगानी, तिना मस्तक उजल टीक, हर दिन सोभा सब जग ऊपर, ज्यों विच उड़वा सस कीक, जिन हर हृदय नाम न वस्यो, तिन सब कार्ज फीक, जैसे सीगार करे दे मानुख, नाम बिना नगटे नग कीक, काड़कड़ रमैया रमत राम राय, सब वरते सब में ईक, जन नानक कौ हर कृपा तारी, गुर भजन त्यायो करी मीक, प्रभाती मोहल्ला चौथा, आगम दयाल कृपा प्रवतारी, मुख हर हर नाम कहे, पातत पावन हर नाम तिहायो, तब केल बिख पाप लहे, जप मन राम नाम रब रहे, दीन दयाल दो पंजन गायो, गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ, काया नगर नगर हर बस्यो, मत गुरमत हर हर सहे, शरीर सरोवर नाम हर प्रट्यो, कर मंदिर हर प्रव लहे, जो नर परम परम उदयाने, ते सागत मूड मोहे, ज्यों मृग नाभ बसे बास बसना, प्रम प्रम्यो चार गहे, तौं वट अगम अगाध बोध प्रभ, मत देवो हर प्रव लहे, जन नानक कौ गुर हासिर तरयो, हर राम नाम रब रहे, प्रभाती मोहल्ला चौथा, मन लागी प्रीत राम नाम, हर हर जप्यो हर प्रभ वडफा, सदगुर बचन सुखा ने ही अरे, हर तारी हर प्रभ कृपफा, मेरे मान भाज राम नाम हर निमुखफा, हर हर दान दियो गुर पूरे, हर नामा मन तन बसफा, रहाओ काया नगर वस्यो कर मंदर, जब सोभा गुरमुख करपफा, हलत पलत जन पये सुहेले, मुख उज्जल गुरमुख तरफा, आन पौ हर हर हर लिव लागी, हर उरतारियो गुर निमुखफा, कोड कोड के दो सब जन के, हर दूर किए एक पलफा, तुमरे जान तुम ही ते जाने, प्रव जान्यो जन ते मुखफा, हर हर आप तरयो हर जान महे, जन नानक हर प्रभ इकफा, प्रभाती मोहल्ला चौथा, गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर, हम मोए जीवे हर जप पा, तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा, बिख डुबदे बां दे कड पा, जप मन राम नाम अर्धम्बा, उपजाम उपाए न पाइये कतहु, गुर पूरे हर प्रभ लाभा रखाओ, राम नाम रस राम रसायन, रस पिया गुरमत रस पा, लो मनूर कंचन मिल संगत, हर उरतारियो गुर हर पा, होमे बिखियानत लोभ लुभाने, उत कलात भुए लुभ पा,
ਇਹ ਭਗਤ ਸੰਤਨ ਸੇ ਵੇ ਕਬਹੁ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਭੂੰਬਰ ਪਰਫਾ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵ ਜਾਨੋ ਹਮ ਪਰੇ ਹਾਰ ਤੁਮ ਸਰਨ ਪਾ।

पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुरु कै बल जाय। आगम अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाईए, लहा खाट होइए धनवंता अपना प्रभु ते आईए। आठ पैर पार ब्रह्म ते आई, सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ। पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती मोहल्ला पंजवा, सिमरत नाम किलभ सब नासे, सत्य नाम गुर दी नीरासे, प्रभ की दरगह शोभा बंते, सेव सेव सदा सोहंते। हर हर नाम जपो मेरे पाई, सगले रोग दोग सा बिनसै,

भगत हरसो मन माना। सुन सज्जन संत मीत सुहेले, नाम रतन हर अगे अतोले, सदा सदा प्रगुणित गाई है, कहो नानक वडभागी पाई है। प्रभाती महला पंजवा, चेतनवंत सेई सच साहा, हर की दर गए नाम साहा, हर हर नाम जपो मन मीत, गुरपूरा पाई गे वडभागी, निर्मल पूर्ण रीत रखाओ, पाया लाभ वजी वाधाई, संत प्रसाद हर के गुण गाई, सफल जन्म जीवन प्रवान, गुर प्रसादी हर अंगमान, बिनसे काम क्रोध अहंकार, नानक गुरमुख उतर है पार। प्रभाती महला पंजवा, गुर पूरा पूरी ताकी कला, गुर का शब्द सदा सद अटला, गुर की बाणी जिस मन वसै, दुख दर्द सब ताका नसै।

आवे, नित नित नित नवे, लख चौरासी जोन ना पवे, ईगा ऊहा चरण पूजारे, मुख उजर साचे दरबारे, जिस मस्तक गुर तरिया हाथ, कोड़ मदे को विरला दास, जल थल महियल पेखे भरपूर, नानक उदरस तिस जन की तूर, प्रभाती मोहल्ला पंजवा, कुर्बान जाई गुर पूरे अपने, जिस प्रसाद

इन नावे को साथ ना संगी, जो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिवलावे, सतगुर पूछ सहज कर पावे, राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए, सतगुर भेटे सो जी पाए, सच्चे नाम रहे लिवलाए, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे, निरकरवास अमर पद पावे, तां दर सच्चे शोभा पावे, गुर सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करे जे कोई, होमे मेरा सब देखोई, निर्मल नाम वसे मन सोई।

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर काढ है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

ते ना पाया जाए, सतगुर ते सहज उपजे, होमे शब्द जलाए, हर शरणाई पाज मन मेरे, सब कुछ करने जोग, नानक नाम ना विसरे, जो कुछ करे सो होग, विपास प्रभाती महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद माल पिता भाई सुध बनता, चुगे चोग अनस जोता, उर्ज परयो मन मीठ मुहारा, गुण गाक मेरे प्राण आधारा, एक हमारा अंतर जामी, दर एका मैं टेक एक सकी, सिर सहा वड पुरख स्वामी रखाओ, छल नागर सो मेरी टूटन होई, गुर कहया हे झूठी तो ही, मुख मीठी खाई कौराए, अमृत नाम मन रहा अघाए, लो मोसो गई विखोट, गुर कृपाल मुए की निचोट, एठकवारी बहुत कर गाले, हम गुर राख लिये कृपाले, ताम क्रोश ठाट ना बनया, गुर उपदेश मुए कानी सुनया, जय देखो ते महा चंडाल, राख लिये अपने गुर गोपाल, दस नारी मैं करी दुहागन, गुर कहया हे रसे बखागन, एन सरबंधी रसा तल जाए, हम गुर राखे घर ले बिलाए, अंग मेव से मसलत छोड़ी, गुर कहया यो मूर्ख होडी, यो नी घर कर कही न पाए, हम गुर राख लिगे लेवलाए, एन लोगन से हम पै बैराई, एक गृह में दुए ना खटाई, आए प्रपे अंतिल लाग, करो तपावस प्रभ सबाग, प्रभ हस बोले किए।

कर स्नान तर चक्र बनाए अंतर की माल तब ही ना जाए एत संजम प्रभ किन ही ना पाया भगवती मुद्रा मन मोया माया रहाओ पाप करे पंचा के बसरे तीर्थ नाए कह सब उतरे बौर कमावे हुए निशंक जंपुर बांध करे कालंक घूंगर बांध

आई, मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव, माने हाट माने पाठ माने है पासारी, माने बासे नाना भेदी परमत है संसारी, गुर के शब्द इहो मन राता, दुबदा सह सुमाणी, सब हुक्म हुक्म है आपे, निरपो समत बिचारी, जो जन जान पदे पुरुषोत्तम, ताची अवगत बाणी, नामा कहे जग जीवन पाया, हृदय अलख बिडाणी, प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग, ताका अंत न जानिया, सर्व निरंतर राम रविया राव, ऐसा रूप बखानिया, गोविंद गाजे शब्द बाजे, आनंद रूपी मेरो रामैया, रहाओ बावन बिखू बाने बिखे, पालते सुख लागला।

ज्ञानं हम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वायरण दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है उपदेशं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है करण कारण समरत है दान देत प्रापूर्ण है निराश आस करण सगल अर्थ आले है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है।

नरक विश्रामं भोजोन्नी परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावण है।

करणा न उपर्जते, विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत निर्त्यं क्रोत जथा मरकट है, अनक शासन ताड़ंत जम दूत है, तब संगे अधवंग नर है, दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक, सर्व जी रखया क्रोत, हे लोभा लंपट संग सिर मोर है, अनक लहरी कलोलते तावंत जी या भो प्रकारं, अनक पांद बो डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता, तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सा समझया, त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञापत नानक हर नर हरे, हे जन्म मरण मूलं।

तहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ भागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर है विखम स्थान मन मोह मदरंग मां असाध पंच तस्तर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध घोरंग अगम तीर नय लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मदर मानुखियंग हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग संत सुवजन है अचेत मूड़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयं सत हदंग परम बादंग अवर्तित है सुध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल नय पजंत तरण समान तिग जन्मन है।

सुंदर पुरख विराजत पेख मन बंचला खोजो ताके चरण कहो कद पाई है हर खां सोई ज तन बताए सखी प्रयोग पाई है नैन न देखे साध से नैन बेहाल लिया करन न सुनगी नाद करन मुंद कालिया।

कमल मन बेदे पूजन सुरत संजोग सागर में उद्यान बान नवखण बसदा परम मूसन प्रेम परम कै कनो एक कर कर्म मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांधे कमल महे पवर रहे लपटाए जब तब संजम हरख सोख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पर वार वार द्यों सर्ब मूसन मरमना जानई मर्त हित संसार प्रेम परमना बेदेव उर्जो मेथ प्योहार काब दब जब जारिये पिशरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसीये पिशरत पुरख दयाल जाको प्रेम स्वाओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहु जाहे लख घाटी ऊचो कनो चंचल चीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नयन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रे प्रेम स्यों पूदना सिमरत अंग प्रगट भयो सब लोम है नानक अधम पतंग।

न है तो लूट ले, राम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

करेंगे ना कर सके शरीर। क्या जानो किस घर किया भयो कबीर कबीर कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै।

एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर देख देख जग ढूंढया, कहूं न पाया ठौर, जिन हर का नाम न चेतेओ, कहां भुलाने और। कबीर संगत करिए साध की, अंत करे निर्वाहो, साकत संग ना कीजिए, जाते हुए बिना हो। कबीर जग में चेत्यो जान के, जग में रहो समाए, जिन हर का नाम ना चेत्यो, बाधे जन्मे आए। कबीर आशा करिए राम की, अवरे आस निरास, नरक परे ते

ज्ञान ते धर्म है, जहां झूठ ते पाप, जहां लोभ ते काल है, जहां खिमा ते आप। कबीर माया तजी ता क्या पया, जो मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मुन वर गले, मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया, शब्द जो भाया एक। लागत ही पोए मिल गया, परिया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक। अंधे एक न लग गई, जो बांस बजाएगे फूक। कबीर है गए बाण सगन कान, छत्रपति की नार। ताज पटंतर ना पुजे, हर जन की पनिहार। कबीर नृप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी कौमान। ओ मांग सवारे बिखे कौ, ओ सिमरे हर नाम। कबीर सुनी पाई थित पई, सदगुर बंदी तीर। कबीर हीरा बन गया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहोरी, ले के मंडे घाट। जब ही पाई है पारखु, तब हीरन की साट। कबीर काम परे घर सिमरिए, ऐसा सिमरो नित। अमरा पुरबासा करो, हर गया बहोरे बित। कबीर सेवा को दोए पले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत ज पावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए,

आवे दज होत है निर्दावे रहे निशंक। जो जन निर्दावे रहे तो गणे इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी ना सके कोई नीर। भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे त्यों।

पंडित जल मुए मूर्ख उभरे भाग कबीर संसा दूर कर कागद दे बिहाए बामन अखर सोध कै हर चरणी चित लाए कबीर संत न छाडे संतई जो कोट के मिले असंत मलयागर पोयंगम बेडेओ ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल भया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जा रहा तो जन के उदक समान कबीर सारी सिरजनहार की जाने नाही कोए कह जाने आपन तनी कह दास दीवानी होए।

कबीर सतगुर सूर में बायाबान जो एक लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई पूम बेकार बिन संगत यो मानई होए गई पाठ शार। कबीर निर्मल

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी कोय न होसी मित। फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग सतानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना। फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण एक कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही

मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश गुण ही परिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश तत्ती तोय न पल्लव जेजल टुब्बी दे फरीदा जो डुहागन रब दी चूरेंदी चूरे जा कुआरी ता चाओ विवाही ता मामले फरीदा एहो पछोताओ वत कुआरी ना थी है कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज तिंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज हंस उडर कोदरे पया लोक वडारन जाए गहला लोक ना जानदा।

साडे त्रैमण जोरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत असूनी बन, मलकल मौत जा आपसी।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो बे आपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक है।

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस तूर बजायो। गुरु रामदास कल उचरै तै अपाय अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नाम रिद नाम निधान रिद सिता की दासी। तै सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग। श्री गुरु शरण भज कल काब भुगत मुगत सब गुरु लग। सदगुर खेमा ताणिया जुग जूथ समाणे। अनपो नेजा नाम टेक जित भगत अघाणे। गुर नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे। इहो राज जोग गुर रामदास तुम हू रस जाने। जनक सोए जिन जानिया उन मारह थरिया। सत संतोख समाचरे अपरा सर परिया। अकथ कथा अमरा पुरी जे देसो पावे। इहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे। तद गुर नाम एक ले मन जपे दृढ़। तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो। तारण तरण खिन मातर जाको दृढ़ तारे।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे पुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सभी ऊपर करी कृपा सहयुग जन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा थाप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी सिर थप्यो हर का नाम अखय निध अप्यो अप्यो हर नाम अखय निध चो जुग गुर सेवा कर फल बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूपोखण परण सतगुर गुरसेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हार जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुर बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलखा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही ए आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दुष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कहे एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रया पूर बोविद वर्णं सद गुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनों बात निचल तू जानी

और कल्पकार मन गए अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रसदा सलामत, कहे न सके को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणित, तिनको मोह भया मन मत का, 84 लख जोन उपाई, निजक दिया सबहु कौ तद का, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जाल आपे थल थमन, आपे किया कड़कड़ बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबे विचार हो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना, तो जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, मन ब्रह्माद क्रुद राधक, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाई गे परमार्थ, तत्संगत स्थिति मन खजना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाह गुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद, आज कोई न जाने, शिव ब्रह्म तर ध्यान, नित्य जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर,

भाग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुध को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गहर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद रतनागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर करबे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कब को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन सब गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुरु रामदास को नाम निधान ध्यान अंतरगत तेज पुंज ते लोक प्रगस। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगस। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर साचो तख्त गुरु रामदास। तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरत। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिधर सिद्ध न छोड़े सत। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरगत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो।

जयो जय जगमय तय घर परम पद पायो नारद त्रू प्रहलाद सुदामा पुपुत हर के जोगण अम्बरीक जय देवतर लोचन नामा अवर कबीर पण तिनको अवतार पयो कल पिंतर जय जगतर परछायो श्री गुरु रामदास जयो जय जगमय तय घर परम पद पायो मनसा कर स्मरत तुझे नार काम क्रोध मिट्यो जो तिण वाचा का स्मरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सार बल पड़ जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो जे सदगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खेन जे सदगुर सिमरंत हृदय घर नाम दिनो दिन जे सदगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावे जे सदगुर सिमरंत रिद सिद नविनद पावे तोई रामदास गुर बल पान मिल संगत तन तन करो जे सदगुर लग प्रा पाई है तो सदगुर सिमरो नरो जिन शब्द कुमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास ताते गौर ज्ञान प्रट पुजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास तब कीर्त जो संत चरण मुड़ लग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास ये अंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास कह गुरु रामदास जिन सदगुर सेव पदार्थ पायो निज बस्त्र घर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मलियागर प्रकट सुवास रूप प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लय उपजो जो परगास जे पिकत अत होए रहस्यमान तोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जानेओ इन्नी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंग अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही न जाई थोड़ी सृष्ट सकल तारण कौ अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखाई माया मोह परम पै फूले सुध धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीर्त की गुर रामदास राखो शरणाई मोह माल बस पियो काम गए केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अमान से चाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो हुए सो मन पर सागर बंदेओ सिर तारे सो प्रसन्न सिर आद पात सचो तख्त जोग पुग संजोत बल गुर रामदास सच सल पान तू अटल राज अपगदल तू सदगुर चौ जुगी आपे आपे परमेसर थुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रिलो है आगम निगम उदरण जरा जमे आरो है गुर अमरदास सिर थप्यो परगामी तारण तरण अग अंतक बदे ना सल कब गुर रामदास तेरी शरण सवैये महल्ले पंजवें के एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद सेवरंग सोई पुरख अचल अभनासी जे सिमरत दुर्मत मलनासी सदगुर चरण कबल तारंग गुर अर्जन गुण सहज विचारंग गुर रामदास कर कियो परगासा सगल मनोरथ पूरी आसा ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो कल जोड़ कर सुजस वखाण्यो भगत योग को जयतवार हर जन क्यों पायो शब्द गुरु परकास्यो हार रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन खर गुर रामदास भगत पुत्र आयो बड़भागी उन मान्यो हृद शब्द बसायो मन मानक संतोखयो गुर नाम दृढ़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन खर गुर रामदास अनपौ ठहरायो जनक राज बरताय।

तार जय मसरा जगतारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भय जिन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मय जो स्वरूपी रहो पार पान मसरा कछ पेद रही गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप

जाना पानी ना लगा जैसे ती मेरा संग जिद डिठे तन पर फड़े चढ़े चवगन वन राज न कोई जीव्या पहुंच न चलिया कोए ज्ञानी जीवे सदा सदा सुरती ही पद होए सरफे सरफे सदा सदा ए वह गई वेहाए नानक किसनु आखिए विण पुछिया ही ले जाए दोस ना दे और आए नू मत चले जा बुढ़ा होवे गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना का ती टोवे पूरे का किया सब कुछ पूरा कट वध किश नाही नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माए समाही सलोक महला तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद अभ्यागत ए ना आखी है।

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मानमुख चंचल मत है अंतर

गुरमुख हसै गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करे साई भगत होवै, गुरमुख होवै सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार, जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले तित सच्चे दरबार, तिन बहिंदिया उड़दिया।

पौरानद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कई अलाप का मोदी औ गुजरी संग

आखण वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे भंडारा, जिस तू देह तसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखां जीवां विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाऊ, साचे नाम की लागे भूख, उत भूख खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचे नाए रहाओ, साचे नाम की तिलवड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे।

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापै जपै बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू द्यापे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तू द्यापे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुद बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ पहिले निवासा, पानी पावक तिनह किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तैं डूबी अले, मन एक ना चेत समूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हाँ जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्रापत मान खुदे हुरिया, गोबिंद मिरन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम।

तेरा चेतना आवे नाओ सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राख पाओ मत देख पूला विसर तेरा चेतना आवे नाओ सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला विसर तेरा चेतना आवे नाओ श्री राग महला पहला कोट कोटि मेरी आर जा पवन पीण पियाओ चंद सूरज दोए गुफैना देखा।

सब मुठी हंकार राओ। जिनी नाम विसारिया दूजी कर लग, दुबदा लागे पच मोए अंतर त्रिसना अग। गुर राखे से उबरे होर मुठी तंदै ठग, मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध। तंदा थका हो मुई ममता माया क्रोध, कर्म लै सच पाई है।

बिन गुण कामना आवई टह टेरी तनखे हे, मेरे मन लै लाह कर जाहे। गुरमुख नाम सलाही है हमें निवरी पाहे राहो। सुन सुन गंडन गंडी है लिख पढ़ बुझै पार, तृष्णा अहनस अगली हमें रोग बेकार। ओह वे प्रवाहो अतोलवा गुरमत कीमत सार, लक्ष्य आण पजे करी लक्ष्यो प्रीत मिलाप, बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावै दुख संताप। हर जप जी अरे छुट्टी है गुरमुख जी न आप, तन मन गुर पै वेचिया मन दी सिर नाल, त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल, सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल।

अंतर की गत जानिए गुर मिलिए संको तार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दे अमर मार। अनहद शब्द सुहावणे पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तैहो मैं होए विनाश। सतगुर सेवे अपना हो सतगुर बाणे तास, खड़ दरगह पै

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतियो सो अवगुण आवै जाए, जिस सतगुर पुरख ना भेटियो सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउ कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुर मिल पौजल लंघीऐ दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लिहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस्त समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलहो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है।

श्री राग महला पहला कर पंजवा अशल शलाई नह शल नह कहो कुटारा कर सके ज्यो साहेब राखे त्यों रह इस लोभी का जियो टल पल बिन तेल दीवा क्यों जलै रहाओ पोथी प्राण कमाई है पौवटी ए तन पाई है सच बूझण आन जलाई है एहो तेल दीवा इं जलै कर चानन साहेब तो मिलै रहाओ इत तन लागे बाणिया सुख होवै सेव कमाणिया सब दुनिया आवन जानिया विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगे बैसन पाई है कहो नानक बहा लुड़ाई है। श्री राग महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हौ सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए सतगुर मन कामना तीर्थ है जिसनो दे बुझाए मन चिंदिया वर पावना जो इच्छा सो फल पाए नाओ त्याई है नाओ मंगी है नामे सहज समाए मन मेरे हर रस चाख तिख जाए जिन्नी गुरमुख चाखिया सहजे रहे समाए रहाओ जिन्नी सतगुर सेवया तिन्नी पाया नाम निधान अंतर हर रस रव रहया चूका मन अभमान हृदय कमल प्रगासिया लागा सही ध्यान मन निर्मल हर रव रहया पाया दरगह मान सतगुर सेवन अपना ते वरले संसार हाँ मैं ममता मार कै हर राख्या और तार हाँ तिल कै बलिहार नै जिन्ना नामे लगा प्यार सही सुखिए चहु जुगी जिन्ना नाम खोटिया पार गुर मिलिया नाम पाई है चूकै मोह प्यास हर सेती मन रव रया करी माए उदास जिन्ना हर का साध आया हाँ तिन बलहारै जास नानक नदरी पाई है सच नाम गुणतास। श्री राग महला तीजा बहु पेह कर परमाई मन हृदय कपट कमाए हर का महल ना पावई मर विष्टा माए समाए मन रे गृही माए उदास सच संयम करनी सो करे गुरमुख होए प्रगास रहाओ गुर कै शब्द मन जीतया गत मुक्त करै मैं पाए हर का नाम त्याई है सतसंगत मेल मिलाए जे लख स्त्रियां भोग करै नव खंड राज कुमाहे बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे हर हार कंठ जिनी पहरिया गुर चरणी चित लाए तिन्ना पिछे रिद सिद फिरै ओना तिल ना तुमाए जो प्रभावै सो थीऐ अवर ना करना जाए जन नानक जीवै नाम लै हर देवो सहि सुभाए। श्री राग महला तीजा कर पहला जिस ही की सरकार है तिस ही का सब कोए गुरमुख कार कमावणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसकै सच वसै सच

गुरमती कट चरणा शब्द मिले हर नाओ, त्रै गुण बिखिया अंध है माया मोह गुबार। लोभी अन कौ सेम दे पड़वेदा करै पुकार, बिखिया अंदर पच मोए ना उरवार ना पार। माया मोहे विसारिया जगत पिता प्रतपाल, बाजहो गुरु अचेत है सबदी जमकाल। नानक गुरमत उबरे सच्चा नाम संभाल। श्री राग महला तीजा, त्रै गुण माया मोह है गुरमुख चौथा पद पाए। कर कृपा मेलाया नु हर नाम वस्या मन आए। पोत्या जिन कै पुन है तिन सत संगत मेलाए। पाई रे गुरमत साच रहाओ, साचो साच कमावना साचे शब्द मिलाओ रहाओ।

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द मिलावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाने, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझै नाही, अनदन दुख विहानी, मनमुखे अंद न चेतही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा भजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै तां हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच हमै दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंतना आवई, नितनित होए खुवार, पिर का महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ, गुरमुख सदा सुहागणी।

अंतरा दुख भ्रम कटियै सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणे जो चलै दुख ना पावे कोई। गुर के पाणे विच अमृत है सहजे पावे कोए, जिन्ना प्रभ तिन पिया हमें विचों खोए। नानक गुरमुख नाम तिहाई है सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना तन मन अगे धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया से ही कर्म करे। सहजे सच मिलावड़ा सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाए।

कुदम करे पशुपंखिया दिसै नाहीं काल ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल जो कर छड़ गवावना सो लगा मन माहे जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए। नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए श्री राग महला पंजवा। कड़ी मुहत का पाहुना का स्वार नहार माया काम व्यापिया समझे नाहीं गावार। उठ चलिया पछताया।

जिन मन वस्या पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक सो लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल सच नाए। मेरे मन

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार बालक बिरद ना जानिए निचल तिस दरबार जो मंगिए सोई पाईए नेदारा आधार जिस पेखत किल विखे हरै मन तन होवे सांत एक मन एक त्याईए मन की लहे परांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात सदा सदा आराधिए।

वन्य पूरव राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया।

सतगुरु की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कुकर हर काया तावै दै दिस जाए। लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए। जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार। जिसनो रखे सो रहे समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवां घर दूजा।

कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार श्री राग महला पंजवा दोकृत सुकृत मंदे संसार सगलाना दोहू ते रहत भगत है कोई विरला जाना ठाकुर सर्वे समाना क्या कहो सुनो स्वामी तू वट पुरख सुजाना रहाओ मान अभमान मंदे सो सेवक नाही तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही कहन कहावन एहो कीर्त करला कथन कहन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला गत अवगत कश नजर ना आया संतन की रेण नानक दान पाया श्री राग महला पंजवा घर सतवां

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद विटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहार नै तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेवया पाओ कर सही पुरख सुजान तिन्ना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिन्ना पिछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुरजेवड दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुभाए सच्चे से तीरतया दरगह बैसन जाए करते हथ वडियाईया पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करन हार सच साहिब सच टेक सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध बिबेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेसर पूजिय मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम संभाल साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल रहाओ गुर समर्थ अपार गुर वडभागी दर्शन होए गोरिया गोचर निर्मला गुरजेवड़े अवर ना कोए गुर करता गुर करन हार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ।

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनों वाय सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए बाबा अल्लहो अगम अपार पाकी नाई पाक थाए सच्चा परवदगार रहाओ तेरा हुक्म ना जापी केतड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखे सोए पीर पै कामर सालक साधक सोंदे और शहीद शेख मसायक काजी मुल्ला दर दर वे सरसीद बरकत तिनको अगली पढ़दे रहन दरूद पुछ ना साजे।

अंबड़ कोई न सकई, हों किसनो पुछन जाओ। वरना वरन ना पावनी, जे किसे वड्डा करे, वड्डे हथ वड्याइयां, जय पावे तैं दे।

गणत गणावने आईया सुभावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इउ पिरड़ावे नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सतबलिहार जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनौ साचो मरे ना जाए नित रवै सोहागणी साची नदर रजाए साच धड़ी तन मांडी है कपड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार बिन पिर पुरख ना जानई साचे गुर कै हित प्यार निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए जा तन कंत ना राविया ता बिरथा जो बन जाए सेजै कंत महलड़ी सूती बूजना पाए हों सुती पिर जागना किसको पूछो जाए सतगुर मेली पै वसी नानक प्रेम सिखाए श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार आपे रतन परख तू आपे मोल अपार साचा मान महत तू आपे देवन हार हर जियो तू करता करतार ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ आपे सागर बोए था आपे पारिया पार साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार ने डरिया डर जानिया बाजगुरु गोबार आसर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे सुन लिवलाए हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक ते तन मैल न लग गई सच कर जस्यो ताक नदर करे सच पाईए बिना मैं क्या साक जिनी सच पछाणिया से सुखिए जुगचार हों मैं तृष्णा मार कै सच रखिया उरता।

कथनी झूठी जग पवै रहनी शब्द सो सार केते पंडित जोत की बेदा करै विचार वाद विरोध सलाहने वादे आवन जान बिन गुर कर्म ना छुट सी कह सुने आख बखान सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोए हर वर नार सुहावनी मैं भावे प्रभ सोए नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए श्री राग महला पहला जप तप संजम साधी है तीर्थ की चैवास पुन दान चंगियाईया बिन साचे क्या तास जिहा राधे तिहा लुणै बिन गुण जन्म विनाश मुंदे गुण दासी सुखोए अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए रहाओ विण राशि वापारिया तके कुंडा चार मूल न बूझै अपना वस्त्र ही कर बार विण वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ यार लाहा अहन सनौतना परखे रतन विचार वस्त लह कर अपने चले कारज सार वण जा रहा स्यो वणज कर गुरमुख ब्रह्म विचार संता संगत पाई है जे मेले मिलन हार मिलिया होए ना विछड़ जिस अंतर ज्योत अपार सच्चा आसन सच रह सच्चा प्रेम प्यार जिनी आप पछाणिया घर मैं महल सो थाए सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए त्रिपावन सो प्रभ जानिया साचो सच है नाए सातन खरी सुहावनी जिन पर जाता संग महली महल बुलाई है सोपर रावे रंग सच सुहागन सा पली पिर मोही गुण संग पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन मैं पूली जे फिरा बिन गुर बूझ ना पाओ नामो पूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पदाऊआ चले चाकर होए राजन जाने अपना दाकर ठाक ना होए नानके को रव रहया दूजा अवर ना कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर निर्मल साचो मन

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

आपे हर जग जीवन दाता आपे बस मिलाए जी जनते क्या विचारे क्या को वक सुनाए गुरमुख आपे दे वड़ियाई आपे सेव कराए देख कुटुंब मोहे लोभाना चलदिया नाल ना जाई सतगुर सेव गुण निधान पाया तिसदी कीम ना पाई प्रभ सखा हर जियो मेरा अंते होए सखाई पेई अड़ै जग जीवन दाता मनमुख पत गवाई बिन सतगुर को मग न जाणै अंधे ठौर ना काई हर सुख दाता मनी वसिया अंत गया पछताई पेई अड़ै जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया अनदिन भगत करै दिन राती हौं मैं मोह चुकाया जिस स्यों राता तै सो होवै सचे सच समाया आपे नदर करे भाव लाए गुर सबदी विचार सतगुर सेवै सहज उपजाय हमै तृष्णा मार हर गुण दाता सद मन वसै सच रखिया उर धार प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए नाम निदान हर मन वसै हमै दुख सब जाए सतगुर शब्द सुनाया हम सत बलिहारै जाओ अपने मन चित कह कहाई अपने मन चित कह कहाए बिन गुरे आप ना जाई हर जियो भगत मच्छर सुखदाता कर कृपा मन वसाई नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई श्री राग महला।

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है होमै जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावै कोई न मेटै भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़ै दूजा भाव न जाणै सतगुर भेटै निर्मल होवा अंदन नाम वखाणै एको पढ़ै एको ना बूझै दूजा अवर न जाणै खड़ दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै तां गत मित पावै हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी सो चित लागै आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणै बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जां नाम चेतै तां गत पाए जां सतगुर मेल मिलाए सत संगत में नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से रंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता।

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर में, खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चित ना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती आपरसा, एक लूकना दे वै दरसा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी अंदर भोगिया, तेरा अंत ना पाया, सुर्ग मछ पयाल जियो, हौ वारी हौ वारणै, कुर्बान तेरे नाम नो रहाओ, तुद संसार उपाया, सिरे सिर तंदे लाया, वेखै कीता अपना, कर कुदरत पासा ढाल जियो, प्रगट पहार है जापदा, सब नावै नो परतापदा, सतगुर बाज ना पायो, सब मोही माया जाल जियो, सतगुर कौ बल जाइए, जित मिले है परम गत पाइए, सुर नर मुन जन लोच दे, सो सतगुर दिया बुझाए जियो, सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो, एहो जगत परम भुलाया, आपो तो दुखवाया, प्रताप लगा दोहागणी, भाग जना के नाही जियो, दोहागणी क्या निशानिया, खसमो कुथियां फिरै निमाणिया, मैले वेस्त ना कामणी, दुखी रहन विहाय जियो, सुहागणी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे लय मिलाए जियो, हुक्म जिन्हां नो मनाया, तिन अंतर शब्द वसाया, सही आसे सुहागणी, जिन सह नाल प्यार जियो, जिन्हां भाणे कार रसियाया, तिन विचों परम चुकाया, नानक सतगुर ऐसा जानिए, जो सब सह ले मिलाए जियो, सतगुर मिलिया फल पाया, जिन विचों अह करण चुकाया, दुरमत का दो कटिया, भाग बैठा मस्तक आए जियो, अमृत तेरी बाणिया, तेरिया भगतां हृदय समाणिया, सुख सेवा अंदर रखे है, अपनी नजर करै निस्तार जियो, सतगुर मिलिया जानिया, जित मिलिया नाम वखाणिए, सतगुर बाज ना पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो, हौ सतगुर विटो घुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नजर करे जे अपनी, आपे लय रलाए जियो, तू सबना माहे समाया, तन करता आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जाको जोत धरी करतार जियो, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, मेरा प्रभ सब किश पाया, आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजिया, अपने सेवकी पैज रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करै जयकार जियो, सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब के जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोग करै जयकार जियो।

तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी पांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुर सिओ चित लाया तिन्नी दूजा भाव चुकाया निर्मल जोत तिन प्राणिया ओए चले जन्म सवार जियो तेरिया सदा सदा चंगियाईया मैं रात है वड़ियाईया अणमंगया दान देवना कहो नानक सच संभाल जियो श्री राग महला पंजवा पै पाए मनाई सोए जियो सतगुर पुरख मिलाया तिह जेवड़े अवर ना कोए जियो रहाओ गोसाई महिंडा इठड़ा आमे अबे था वो मिठड़ा भैन भाई सब सज्जना तुद जिहा नाही कोए जियो तेरा हुक्मे सामने आया मैं सतका हर जो आया नाव बीजन लगा आस कर हर बोहर बख्श जमाए जियो हाँ गुरमिल एक पछाणदा दुया कागल चेतना जानदा हर एक तय कारे लायोन जो पावे तवें निभाहे जियो।

हथो हथ नचाइए प्राणी मात कहे सुत मेरा चेता चेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे ना जाने।

मात पिता सुत नेहुक नेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटे गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जा रहा मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रस कस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जनों मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिनमै पया पराया बुद्ध विसरजी गई स्याणप करे अवगण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभचे तो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा को ताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चले क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरे गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाण आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावे चोट ना खावे ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरै वन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्तो ते चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिया कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पाली एवन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तसे न जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिवलाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तस्काल ना कभू खाए तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लगा यार जंजाल तन चितवै तन संचवै मन जा रहा मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभालै जे होवै अंत सखाई एहो तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई।

दसी मासी मानस किया मन जारिया मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाने जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सुकर्म कराए आपे इस जनता वस किश नाहे कहो नानक प्राणी पहलै पहरै तर पाए ता उदरै माहे दूजे पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणी बन जा रहा मित्रा मन मता अहुमे बुरा भला ना पछाण प्राणी अगै पंथ करारा पूरा सतगुरु कबू ना सेवया सिर ठांडे जम जंदारा धर्म राय जप क्रस बवरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोबन लहरी दे तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिक संचय अंध ज्ञान पुत्र कलत्र मोह लपटे आवन जा रहा मित्रा अंतर लहर लोवान अंतर लहर लुभान प्राणी सो प्रभ चेतना आवै साध संगत स्यो संग ना किया बहुजो नी दुख पावै सृजन हार विसारिया स्वामी एक निमख ना लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरै बिक संचे अंध ज्ञान चौथे पहरै रहन कैवन जा रहा मित्रा दिन नेड़ै आया सोए गुरमुख नाम समाल तू मन जा रहा मित्रा तेरा दरगे बेली होए गुरमुख नाम समाल प्राणी अंते हरना अंते होए सखाई एहो मोह माया तेरा संग ना चल झूठी प्रीत लगाई सगली रैन गुदरी अंधे आरी।

सुंदर स्वामी धाम भगत विश्राम आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते बिखै बन फीका जानिया भय किरपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संगत निध मानिया सर्ब सो सुख आनंद घन प्यारे हर तन मन अंतर सीवते एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा जप जप नानक जीवते डखणा।

संत प्रेम ठगौरी पाए री जाए गोविंद मन मोया जियो संतन कै प्रसाद आगाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोहया दुख सब जोहया भगत लखन कर वस भए मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौण ना माया होहया कर गए लीने नानक प्रप्यारे संसार सागर नहीं पोहया डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गए लीने हर जसो दीने जो न तावै नह मरी सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ न जाय अकथ स्वामी सत कह जाय नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोई जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिने अवर ना कोए हर गुर सरण आई पाई है मन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जनामिन पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हों मैं कर्म कमाऊं दे ज्यों वेसवा पुत निनाओ पिता जाता होई है गुर तुठा करे पसाओ वड भागी गुर पाया हर अहनस लगा पाओ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीर्त कर्म कमाओ।

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हरे आपे आपो पाएंदा हरे आपे देवै ले हरे आपे परम भुलाएंदा हरे आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के ही के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटिए हरे आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रहरास। रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतने मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार। नानक सच्चा सतगुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा। होर बिरहा सब धात है जब लग साहिब प्रीत ना होए। एहो मन माया मोहया वेखण सुन ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै। अंधा क्या करे नानक जन अखी लीतिया सोई सच्चा दे पौड़ी। हर इको करता एक इको दी बाण हर हर इक सह दा है अमर इको हर चित तार। हर तिस बिन कोई नाहे डर भ्रम पौ दूर कर। हर तिसै नो सालाहे जे तुद रखे बाहर कर। हर जिसनो होए दयाल सो हर जप पौ बिखम तार। श्लोक महला पहला। दाती साहेब संधियां क्या चलै तिस नाल इक जागंदे ना लहन एक ना सुत्या दे उठाल। महला पहला। सिदक सबूरी साधका सबर तो सा मलाए का दीदार पूरे पाए सा थाओ नाही खाए का। पौड़ी सब आपे तो दियो पाए कै आप कर लाई तू आपे वेख वेखदा अपनी वड्याई। हर तुदो बाहर किश नाही तू सच्चा साई तू आपे आवरदा सबनी थाई। हर तिसै त्यावो संत जनो जो ले छड़ाई। श्लोक महला पहला। फकड़ जाती फकड़ नाओ सबना जिया इका शाओ आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापै जा पत लेखै पाए। महला दूजा जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगै मर चलिए त्रिग जीवन संसार ता कै पाछै जीवना। पौड़ी तुद आपे धरती साजी है चंद सूरज दुए दीवे दस चार हट तुद साजे आ वापार करीवे। इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख थीवे तिन जम काल ना वे आपई जिन सच अमृत पीवे। ओए आप छुटे परवार स्यो तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला। कुदरत करके

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर ता मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझे त्यावै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे, तिन्हों कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा, कलो मसाजनी क्या सदाई है, हृदय ही लिख ले हो। सदा साहेब कै रंग रहै, कऊ न तूट सने हो। कलो मसाजनी जाए सी, लिखिया पी ना ले जाए। नानक साहेब प्रीत ना जाए सी, जो तुर छोड़ी सचै पाए। महला तीजा, नदरी आमदा नाल न चलई, वेखो को वे उपाए। सतगुर सच दृढ़ाया, सच रहो लिवलाए। नानक सबदी सच है, करमी पल्लै पाए। पौड़ी

पाए, जब तब संयम पाणा सतगुरु का करमी पल्ले पाए। नानक सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावे सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सदा सुख हो वै दिन राती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित सिमर तो सब किलविख पाप लहाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लै जाती। हर हर नाम जपो मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखिया तुर साचै, हर तित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवयो, शब्द ना कीतो विचार। अंतर ज्ञान ना आयो, मृतक है संसार। लख चौरासी फेर पया, मर जमै होए खुवार। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निधान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुर शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनो मेले न विछड़ै, सहि समावै सोए। महला तीजा। सो भगवती जो भगवंतै जाणै, गुर प्रसादी आप पछाणै। धावत राखै इकत कर आणै, जीवत मरै हर नाम वखाणै। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा। अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए। पर निंदा करे अंतर मन लाए, बाहर मल धोवे मन की झूठ ना जाए। सत्संग स्यों बाद रचाए, अंदिन दुखिया दूजे पाए रचाए। हर नाम ना चेतै बहु कर्म कमाए, पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाए। नानक बिन सतगुर सेवे मोख ना पाए पौड़ी। सतगुर जिनी त्याया से कड़न सवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त आगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन का होवा कृपाल हर से सतगुर पैरी पाही। तिन ऐथे उथे मुख उजले, हर दरगह पैंदे जाही। श्लोक महला दूजा। जो सिर साई नानवै, सो सिर दी जय डार। नानक जिस पिंजर

माज महला पंजवा सबे सुख पय प्रभ तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सो रसोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़ अंतर वरत नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाण जियो प्रा मृणय की है निशानी मने को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाण जियो हथी दिती प्रभ देवन हार जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध स्याणप किशु ना जापे अपने संता नो आप सहाई प्रभरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच त्याई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याय त्याय जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत न जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलता थाई।

परम पद पाए, सतगुरे आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावनिया, एक कूड़ लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए, आप डुबे सगले कुल डोबे, कूड़ बोल बिखावनिया, इस तन मैं मन को गुरमुख देखै, पाए पग जाह मैं सोखै, सिद्ध साधक मोन तारी रहे लिवलाए, तिन पी तन मैं मन ना दिखावनिया, आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई, नानक जिस नाम देवै सो लेवै, नामो मन वसावनिया, माज महला तीजा, इस गुफा मैं खुट पंडारा, तिस विच वसै हर लख अपारा, आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप मजावनिया, हाँ वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावनिया, अमृत नाम महारस मीठा, गुरमती अमृत पियावनिया, रहाओ हाँ मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम ना पाए कोई, गुर कृपा मन वसावनिया, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया, ज्योति ज्योत मिली मन मानिया, हर दर शोभा पावनिया, शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम नल है बहुत वेगार दुख पाए, मनमुख अंधे सूजै नाही, फिर घेरे आए, गुरमुख वथ पावनिया, गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखै हो मैं मैल जाए, बैस सुथान सद हर गुण गावै।